FM बैंड के 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती
4: वंदन वार।

लीजिए श्रोताओं, सुनिए सबसे पहले आज का चिंतन। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर बदलाव एक संकेत है और हर क्षण भगवान की योजना का हिस्सा है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए वंदनवार में भक्ति रचनाएं।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का पाठ आज भाग 223 प्रसारित किया जाएगा। 6:45 पर और शाम को पुनः शाम को 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। इसका भाग एक प्रसारित होगा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर और पुनः दिन में 2:00 आप सुनेंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर चंचल वर्मा का। सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक। पर सुबह और रात्रि 9:30 पर पुनः आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार डांसिंग पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा में आज के मेहमान के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुबह 10:00 अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति कल्पना शेट्टी की है। रंग तरंग कार्यक्रम का प्रसारण समय 11:00। 12:05 पर सुनिएगा यादव की महफिल। 1:00 सुरीला सफर। दोपहर 2:15 पर समाचारों के बाद आप सुनेंगे 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 सखी सहेली के अंतर्गत बातचीत होगी सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर। कहानी पद्मश्री की अंतर्गत बात होगी बसंती देवी बिष्ट उत्तराखंड की पहली जागर लोक गायिका के बारे में। मुझे कुछ कहना है इसमें आप बात सुनेंगे आज ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा। उपयोगी टिप्स जिसमें कि आपको टिप्स दिए जाते हैं खाना बनाते समय कुछ काम के टिप्स। संवादक चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव रहेंगे। शाम 4:00 हेलो फरमाइश सुनिएगा संवादक ममता सिंह। शाम 5:00 छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:30 पर सुनिएगा झरोखा। 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला इसका प्रसारण समय रहता है 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा इनसे मिलिए में विग मेकर अनवर पावस्कर से। प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान।

रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा हास्य नाटिका मशीन का चक्कर। लेखन शांति स्वरूप प्रधान का है, निर्देशन विनोद रस्तोगी का। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज रात 10:30 पर।

10 बजे छाया गीत आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज रात रात 10:30 पर, और 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ, आज इसका भाग 223 आप सुनेंगे।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशलक्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशलक्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। तो आइए सुनते हैं वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। मित्रों, वायोलिन एक ऐसा वाद्य जो पश्चिम से आया और हमारे यहाँ हमारे संगीत में बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से रच बस गया। पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में चेंबर म्यूजिक से लेकर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा तक इस्तेमाल किया जाने वाला ये वाद्य, इसका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ और किस तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ संगीत में किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, इसकी शास्त्रीयता के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए विविध भारती के स्टूडियोज में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। कंडारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
2: शुक्रिया आप विविध भारती का और श्रोताओं का।
1: आपका अपने ही घर में स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। श्रोताओं, अपने घर में मैंने इसलिए कहा क्योंकि पंडित एसएल कंडारा साहब आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक से लेकर सहायक केंद्र निदेशक और उसके बाद दूरदर्शन में चीफ प्रोड्यूसर यानी प्रमुख निर्माता के पद पर कार्य कर चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। कंडारा साहब, वायलिन के बारे में हम तफसील से जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि वायलिन का जन्म कहाँ हुआ और कैसे इसे पश्चिम में संगीत में इसे स्थान मिला।
2: जयंत जी, वायलिन अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे नज़र आया और परिपूर्ण साज, परिपूर्ण वाद्य की तरह इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने पाया और देखा। जहाँ तक इसके जन्म का या इसके उद्भव का प्रश्न है, भारत में कुछ भ्रांतियां हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रावण हत्ता करके एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका एक ये इनकार्नेशन और मॉडिफाइड रूप है, पर मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा वायलिन मैंने देखा है, वो वायलिन पाश्चात्य देशों का ही प्रोडक्ट मुझे लगता है। 16 सेंचुरी में
1: जी
2: इस वाद्य को पहली बार 1530 में फेरारी साहब की पेंटिंग में, एक बहुत बड़े पेंटर थे फेरारी, ग्रैंडेजियो फेरारी, ये फ्रांस के पेंटर थे, उनकी पेंटिंग में ये परिलक्षित हुआ है 1530 में। और 1530 में इस साज के तीन तार उसके साथ बंधे हुए थे, थ्री वायर्स इंस्ट्रूमेंट। अब विविध भारती में तो अपने लिमिटेशन है, नहीं तो श्रोताओं को हम लोग वो साज की पेंटिंग बताते थे।

0: तो कोई बात नहीं, श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इस बाजे का जो ओवरऑल पैटर्न जो अभी एक्सेप्टेबल है और वर्तमान में उपलब्ध है, वो इस्टेब्लिश हुआ अमाटी फैमिली के जेकब स्टेनर और एंटोनियो स्टेडिवेरी। अच्छा। ये दो लोगों ने इसका जो वर्तमान स्वरूप है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, वो उन लोगों ने इसको वर्तमान शेप दिया।
1: जी जी।
0: अब स्टेडिवेरीस के नाम से तो बाजा ये प्रचलित है और मेरे पास भी जो वायलिन एक है
1: जी।
0: वो स्टेडिवेरीस मैक है और ये वर्ल्ड ओवर ये जो मैक है बड़ा ऊंचे दर्जे पे देखा जाता है।
1: हाँ जी।
0: बड़े बड़े वायलिनिस्ट इस मैक के वायलिन बजाते हैं। ये मान लेने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये बाजा पश्चिमी बाजा है।
1: इसका आगमन हमारे देश में किस तरह से हुआ?
0: ये अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट हमारे यहाँ जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण, यूं कहिए कि वो निवेशवाद के कारण आना शुरू हुआ
1: जी,
0: तो मद्रास में सबसे पहले बैंड के साथ ये बाजा वहाँ पे उपस्थित था।
1: अच्छा।
0: ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंड मास्टर्स लोग जो थे
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो इसका उपयोग बैंड में करते थे। और मद्रास में जो बालू स्वामी दीक्षितर साहब थे, ये बहुत बड़े कंपोजर थे, मुथु स्वामी दीक्षितर
1: जी
0: उनके भाई थे, तो उन्होंने इस बाजे को देखा और बैंड वाले जो एक्सपर्ट्स थे उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की।
1: हाँ हाँ।
0: और सबसे पहले उन्होंने उस बाजे को सीखा और उसको अपने हिसाब से बजाने की कोशिश की।
1: वाह।
0: ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये लगभग 17 सेंचुरी में शुरू हुआ और उस जमाने में शुरुआत के बाद साउथ इंडिया में वायलिन इतना छा गया
1: जी
0: कि आज हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में, हर गायक के साथ, हर वादक के साथ वायलिन आप बजता हुआ देखेंगे।
1: जी जी। कंडारा जी, ये मैं जानना चाह रहा था कि पश्चिम में इसे जिस तरह से बजाया जाता है, इसके तारों की ट्यूनिंग जो की जाती है उसमें, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है इसे अपना लिया गया, मगर इसकी ट्यूनिंग में फर्क है दोनों जगह जो बजता है
0: जी,
1: वो क्या खास फर्क है?
0: देखिए, पश्चिम में जो ट्यून करते हैं बड़े बड़े लोग, यहूदी मेनन साहब, लुकासल्स वगैरह
1: जी,
0: ये मसा परे का एक स्केल हमारे यहाँ कहते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: मंद्र तार जो है मिलाते हैं मध्यम में, फिर सा हो गया, फिर पंचम, फिर आखिरी तार जो है वो रिखव तार सप्तक की, और ये स्केल कुछ दिनों तक हमारे यहाँ चला, फिर उसके बाद में आगे जो भी इसमें परिवर्तन हुए वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वादकों का इस पे जो सिद्धहस्त अधिकार है
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो अद्भुत है, उसकी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते।
1: इनमें बहुत से स्टालवार्ड्स हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, एक प्रमुखता से जिनका नाम लिया जा सकता है वो है यहूदी मेन्युहिन। बहुत से
0: अनडाउटेडली
1: भारतीय संगीत प्रेमी उन्हें जानते हैं क्योंकि यहूदी मेन्युहिन साहब ने पंडित रविशंकर जी के साथ मिलकर के जो काम किया है संगीत के क्षेत्र में,
0: बिल्कुल
1: वो अद्भुत है।
0: डेफिनेटली यहूदी मेन्युहिन साहब वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पहचाना और उसको इज्जत दी
1: जी,
0: उसमें पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब और मेरे गुरुजी पंडित राम नारायण जी, और गज के बाजों को वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में सबसे महान माना गया, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो शुरुआत में यहूदी मेनन साहब के साथ कुछ बहुत बड़ा, उनके साथ मेरे कहने से बड़े नहीं हो जाएंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, उनका कुछ एक मैं चाहता हूँ कि एक कोई
1: यहूदी मेनन द्वारा कंपोज किया हुआ एक जो संगीत रचना है उसकी झलक सुनवाते हैं।
0: बहुत बहुत आदर की बात है एंड इट विल बी ग्रेट ट्रिब्यूट टू दैट पर्सनैलिटी, उनको आदर मिलेगा और मैं वो आदर का भागीदार बनना चाहता हूँ आपके साथ।
1: जी जी, आइए सुनते हैं।

0: इस खूबसूरत रचना को सुनने के बाद पंडित जी, भारत में आपने बताया कि दक्षिण में इसे बालू स्वामी दीक्षितर ने इसे अपनाया, सीखा और बहुत अधिक लोकप्रिय किया, इसका प्रचलन उत्तर भारत में किस तरह से हुआ और कौन इसके प्रणेता रहे हैं?
1: जैन जी, सबसे पहले जब मैंने होश संभाला तो इस बाजे को देखा, संगीत के बड़े विद्वान मनीषी ऋषि
0: जी जी
1: जो भी कह लें उनके लिए कम है, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, तो उनका दिनमान पे एक फोटोग्राफ था वायलिन हाथ में लिए हुए।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो इस बाजे को सबसे बड़ी इज्जत उनके हाथ में जाने से उत्तर भारत में मिली, उन्होंने इस बाजे को इज्जत बख्शी। वो कैसा बजाते थे, हमारे पास उसके कुछ रिकॉर्ड्स ही हैं मेरे ख्याल से, श्रोताओं को उनमें से कोई उपलब्ध हो तो सुनवाएं।
0: जी अवश्य। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का बजाया हुआ राग सिंदूरा की एक झलक अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल, बड़े आदर के साथ श्रोताओं को ये पेश करिए आप।

0: उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के वायलिन पर बजाए राग सिंदूरा की झलक हमने सुनी और श्रोताओं इसी के साथ वायलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी यहाँ समाप्त हो रही है। फिर भेंट होगी, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया। कीजिए मेरा नमस्कार स्वीकार। लीजिए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति। फिल्म का नाम है सुहागन। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में ये गीत है। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं भूले बिसरे गीत में अगला गीत। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, रचनाकार कैफ इरफानी है, संगीत फिर से मदन मोहन का और फिल्म का नाम है शेरू।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: கண்ணையா
1: हाय हाय हाय।
2: ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शराबी से। मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर

0: प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, वक्त है एक अंतराल का, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता

0: साहिब बहादुर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी किशोर कुमार की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सारंगा फिल्म से। भरत व्यास के बोल थे, संगीत था सरदार मलिक का, और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं APJ अब्दुल कलाम के इस सुविचार से, सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो है आप खुद।

और अब जानकारी लेते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जो आज ही के दिन यानी 18 जून को इतिहास में घटित हुए। 1999 में आज ही के दिन 35 यूरोपीय देशों के बीच लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। 2008 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की। और अब जान लेते हैं उन महापुरुषों को जो आज ही के दिन जन्मे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक दादा धर्माधिकारी का जन्म आज ही के दिन 1899 में हुआ। नौकायान में भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे होमी डैडी मोतीवाला, इनका जन्म आज ही के दिन 1958 में हुआ।

और अब जान लेते हैं उन विभूतियों को जो इस दुनिया को आज ही के दिन अलविदा कह गए। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का निधन आज ही के दिन 2002 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, इनका निधन आज ही के दिन 2021 में हुआ। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के बाद रुक करते हैं गीत संगीत की ओर, सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये गाना।

और अब जानकारी लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की। दिन बुधवार को भी कैमूर बेहद गर्म रहा। दिन भर गर्म हवाएं चली। मौसम विज्ञान केंद्र अनीसाबाद पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 जून की रिपोर्ट के अनुसार कैमूर जिला राज्य में सबसे गर्म रहा। हीट वेव के साथ कैमूर में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिला शिक्षा कार्यालय कैमूर के सभागार में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने तथा समाज में नशा मुक्त वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं एवं प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई।

मुहर्रम का चांद नजर आते ही रोहतास एवं नौहट्टा प्रखंड का माहौल धार्मिक आस्था और श्रद्धा से सराबोर हो गया। चांद दिखने के साथ ही प्रखंड के विभिन्न गांवों और चौक चौराहों पर या हुसैन के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम माह का चांद दिखने के बाद नए हिजरी वर्ष की शुरुआत हो जाती है। मंगलवार को मुहर्रम की पहली तारीख के साथ इस्लामी नव वर्ष का आगाज हुआ। परंपरा के अनुसार अकबरपुर के सदर चौक और अन्य निर्धारित स्थानों पर अखाड़ों की स्थापना शुरू कर दी गई। मुहर्रम इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण महीना है, जो त्याग, बलिदान और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसी महीने में हजरत इमाम

कैमूर जिला अंतर्गत 1604 सरकारी व निजी विद्यालयों में नामांकित 1.88 लाख छात्रों का अपार आईडी बन चुका है, जबकि 89,609 छात्रों का अपार आईडी नहीं बना है। बता दें कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की अपार आईडी नहीं बन पा रहा है। ऐसे छात्रों को भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं और शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण में अपार आईडी जरूरी। बुधवार को आत्मा कैमूर के तत्वाधान में नुआव प्रखंड अंतर्गत मुखराव व कोटा पंचायत में कृषि जन कल्याण चौपाल सह खेत बचाव अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण की जानकारी दी गई। चार महीने से अटका है निजी नलकूप अनुदान, किसान बोले बोरिंग कराए भी। खरीफ सीजन सिर पर है, लेकिन कैमूर के किसान सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। लघु सिंचाई विभाग ने निजी नलकूप पर अनुदान की योजना तो शुरू की, पर चार महीने बीतने के बाद भी नया लक्ष्य जारी नहीं किया। जिले में नहरों का जाल कमजोर है, धान की खेती के लिए किसान निजी नलकूप पर निर्भर हैं। विभाग ने अनुदान देने का वादा किया था, आवेदन लिए गए पर लक्ष्य नहीं आया।

कैमूर जिला अंतर्गत सभी 1700 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ओआरएस पैकेट और पैरासिटामोल सिरप की उपलब्धता राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर अनिवार्य कर दी गई है। जिला स्वास्थ्य समिति के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ऋषिकेश जायसवाल ने बताया कि जिले में करीब 1700 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, सभी पर ओआरएस और पैरासिटामोल सिरप पहुँचा दिया गया है। स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी के बाद सुनते हैं एक और गाना फिल्म अभिमान से।

और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। राज्य में पीपीपी मोड पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मंजूरी, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है सूबे के 500 स्थानों पर कैमरे से ट्रैफिक की निगरानी होगी, इसके लिए इन स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन व दुर्घटना नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए पीपीपी मॉडल पर इसे स्थापित और क्रियान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। आगे हिंदुस्तान की सुर्खी है सूबे में हवाई पर्यटन को मिली हरी झंडी। मंत्रिमंडल ने पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के बीच तेज और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बिहार हेली पर्यटन एवं वायु पर्यटन सेवा योजना 2026 को भी मंजूरी प्रदान की। योजना के पहले चरण को 15 जुलाई 2026 से 15 जनवरी 2027 तक लागू करने का प्रस्ताव है। इसकी शुरुआत वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, मामुंडेश्वरी मंदिर कैमूर और राजगीर नालंदा से की जाएगी। वाल्मीकि नगर के लिए सरकारी विमान का उपयोग किया जाएगा, जबकि कैमूर और राजगीर के लिए किराए के हेलीकॉप्टर रहेंगे। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन खरीद बिक्री को मिली छूट, इस खबर को भी सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री और स्थानांतरण पर लगी रोक के बीच भू स्वामियों को बड़ी राहत दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि विशेष

स्थितियों में जमीन की खरीद बिक्री और लीज की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने आवास बोर्ड की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचित बिहार रैती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत भूमि खरीदने के लिए अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। बैठक में 29 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। आगे दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिहार के 60 लाख परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक में 60 लाख परिवारों के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए योग्य पाए जाने की जानकारी सामने आई है। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना 2 को लेकर बैठक हुई। इस दौरान सामने आया कि बिहार में 1,04,00,000 लोगों को चिन्हित किया था, इनमें 60 लाख परिवार ही योग्य पाए गए हैं। बैठक में राज्य के किसान की समृद्धि, ग्रामीण बुनियादी ढांचे की सुदृढ़ीकरण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करने को लेकर नए निर्णय लिए गए। प्रदेश में जुलाई से खुलेंगे सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस कथन को सभी अखबारों ने फ्रंट पेज पर जगह दी है। प्रभात खबर लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सम्मान समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की प्रतिभा दुनिया में अपनी पहचान बना रही है और सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है जिसमें राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में लगभग 73,000 सरकारी स्कूल होने के बावजूद बड़ी संख्या में विद्यार्थी निजी स्कूल की ओर जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार जुलाई से मॉडल स्कूल शुरू करने जा रही है। इन स्कूलों का नाम सरस्वती विद्या निकेतन होगा। आगे प्रभात खबर की सुर्खी है, पावापुरी में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आई बस दंपति की मौत। गिरियक थाना क्षेत्र के पावापुरी समवरण शरण मंदिर के पास बुधवार की सुबह एक यात्री बस हाई वोल्टेज बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ गई, जिससे दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। सभी मजदूर बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड स्थित चौतरवा गाँव के ईंट भट्टे पर काम करने के बाद अपने गाँव घोसरावा लौट रहे थे। आरा में पुलिस पर पिस्टल तानने वाले युवक ढेर, इस खबर को सभी अखबारों ने सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर के शब्द हैं, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तानने वाले युवक की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के समीप एसटीएफ और भोजपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से जख्मी युवक ने पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुधवार की सुबह गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर युवक द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी थी। गोली उसके दोनों पैर में लगी थी। और अब एक नजर आर्थिक एवं खेलकूद जगत से। सेंसेक्स फिर 77,000 के पार पहुंचा, निफ्टी में भी तेजी। घरेलू बाजारों में तेजी का लगातार चौथा कारोबारी सत्र रहा। इस दौरान सेंसेक्स में कुल 3,323.07 अंक की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी 924.1 अंक चढ़ा है। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 347.14 अंक चढ़कर 77,155.62 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 410.51 अंक बढ़कर 77,218.99 अंक तक पहुंच चुका था। इसी तरह निफ्टी 96.55 अंक की बढ़त के साथ 24,085.70 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 119.05 अंक बढ़कर 24,108.20 अंक तक चला गया था।

इकाना में गिल किशन का शतकीय तूफान। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन की आतिशी पारियों से भारतीय टीम ने एक दिवसीय क्रिकेट में आठवीं बार 400 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया। इस ऐतिहासिक मुकाबले में मेजबान टीम ने

49.5 ओवर में 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। दूसरी ओर अफगानिस्तान ने भी पहली बार किसी मैच में भारत को ऑल आउट करने में कामयाबी हासिल की। बल्लेबाजों के बाद सिंधु के कमाल से भारत ए टीम फाइनल में। बल्लेबाजों और गेंदबाजों के ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत ए ने बुधवार को अफगानिस्तान ए को 101 रन से बड़े अंतर से हराकर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। भारत ने कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्र के अर्धशतकों की मदद से 9 विकेट पर 319 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान ए को 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रन पर ढेर कर दिया। और अब मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 17 से 21 जून के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत तथा दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। और आज के इस अंक में यहीं तक। कल नए खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त संगीता को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समाचार प्रभात सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें।

0: www.radiomirchi.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
2: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
3: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
4: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
5: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
6: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के

0: दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: We have a huge pool of talent.
7: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट ए एफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उपकार फिल्म का गाना।

जब जब फूल खिले, इस फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी की रत्ना थी, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता थे थाना मोड़ गढ़नों का रोता से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुन्निशा सदा मंसूरी, नगमा निशा लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज। इसी गाने की फरमाइश की थी मछली गोदाम कैदी मोड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह और लीलू रितु सिंह। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म धर्मकांटा से, आवाज़ आशा भोसले की है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, धुन बनाई है नौशाद ने। इस गाने को सुनना चाहते हैं खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से जयंत कुमार पैरागी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लैला मजनू फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीतकार थे साहिर, संगीतकार मदन मोहन जयदेव। इस गाने को सुनना चाहा था कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकत प्रवीण, सदा फारजो, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, सादिया तस्नीम और अलीशा। मदरसा रोड कोवात से हाशिम आज़ाद, खैरुन्निसा खाकसार अहमद। इसी गाने की फरमाइश की थी धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा और अनुराधा अल्पना यादव। दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमार रानू, खुशी प्रवीण साहू, सीएल यादव। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शतरंज से। गायक कलाकार हैं साधना सरगम और कुमार सानू। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है आनंद मिलिंद ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं जय हिंद तेंदुआ नबीनगर से गिरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सुजीत और टुनटुन। सर गुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम और कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार।

0: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
3: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी

0: चस्मा ना होने दे। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आम आम आम आ गए हैं बिहार के आम। हर डाल से आए मिठास भरा पैगाम, सुनहरा रंग मधुर महक मन को भाए अपार। जरदालू मालदा का मेला सजा हमारा बिहार। दुधिया गुलाब खास कृष्ण भोग है स्वाद, एक से बढ़कर एक किस्म रहेगी चिरयाद।
3: पामेती पटना में 3 दिवसीय भव्य आयोजन, 19, 20, 21 जून, सादर है आमंत्रण।
2: अब खेती हुई स्मार्ट, देखें तकनीक का कमाल। QR और AI से सुलझे हर सवाल। ड्रोन ऐप और विज्ञान आम का है नया अंदाज। परंपरा में है जड़े गहरी पर डिजिटल का आगाज।
4: बच्चों हेतु चित्रकला और क्विज की भरमार। आम खाइए, इनाम पाइए, है यह त्योहार।
2: परिवार सहित पधारिए, मित्रों को भी लाइए। प्रवेश है पूर्णतः निशुल्क, उत्सव का आनंद उठाइए। हर आम की है विशेष पहचान, आम महोत्सव बढ़ाए बिहार की शान। विशेष जानकारी हेतु जाएं horticulture.bihar.gov.in पर। उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आने वाले रैयतों को विशेष परिस्थितियों में जमीन की खरीद बिक्री और लीज की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से 1 साल तक के लिए मान्य होगी। और मौसम विभाग की आज भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में लू की चेतावनी। उत्तर पूर्वी जिले अररिया, किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने विकसित होने वाले ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आने वाले रैयतों को विशेष परिस्थितियों में जमीन की खरीद बिक्री और लीज की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अब रैयत राज्य आवास बोर्ड को अपनी जमीन बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से अनुमोदित निजी निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशक भी सीधे रैयतों से भूमि खरीद सकते हैं या लीज पर ले सकते हैं।
1: इसमें ये चूंकि अभी जो रोक लग गई थी, इसके कारण कई सारे लोगों को भूमि विक्रय करने की आवश्यकता थी। अभी सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इसको बिहार राज्य आवास बोर्ड उनसे सीधे खरीद सकेगा। आप अवगत हैं कि कुछ दिनों पहले ही बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि योजना का प्रथम चरण आगामी 15 जुलाई से अगले वर्ष 15 जनवरी तक संचालित किया जाएगा।
1: इसके अंतर्गत जो राज्य में उपलब्ध हेलीकॉप्टर है उससे पटना से वाल्मीकि नगर, पटना से राजगीर और पटना से कैमूर जाने के लिए और साथ ही साथ पटना में हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए प्रावधान किया गया है। इसके लिए

0: सीट उपलब्ध हैं प्रति सप्ताह, और इसकी राशि भी निर्धारित की गई है। जैसे पटना वाल्मीकि नगर के लिए प्रति यात्री किराया 5,000 है, पटना कैमूर के लिए 6,000 है, पटना राजगीर के लिए 4,000 है, और जॉय राइड जो 10 मिनट का होगा उसके लिए 2100 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है।
1: श्री चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने लद्दाख स्थित सिंधु नदी दर्शन के लिए राज्य के मूल निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना को मंजूरी दी। इसके तहत तीर्थयात्रियों को यात्रा पर हुए खर्च का 50% या प्रति यात्री 20,000 रुपये, जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कला और संस्कृति विभाग के तहत बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप समिति के गठन और इसके निबंधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में 500 स्थानों पर CCTV कैमरे से यातायात की निगरानी की जाएगी।
0: इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु बिहार सड़क सुरक्षा निधि से कुल 622 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत PPP मॉडल के आधार पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें ANPR कैमरा इत्यादि भी रहेंगे, और यह अपेक्षा की जाती है कि इसको लगाने से लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन और बेहतर तरीके से करेंगे। यह अनुमान किया गया है कि लगभग इससे जो दुर्घटनाएं हैं उसमें 22% की कमी होगी।
1: कैबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के प्रमाण पत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से 1 साल तक के लिए मान्य होगी। पहले इसे जारी किए जाने की तिथि से 31 मार्च तक इसकी वैधता समाप्त हो जाती थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में 20 जून से पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करने लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पश्चिम चंपारण के बेतिया, अररिया के फारबिसगंज, गोपालगंज, सीवान और कयाची में ये सेवा केंद्र खोले गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अंचल स्तर पर चलाया जा रहा विशेष अभियान अब 21 जून तक चलेगा। इसके तहत राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त 40 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि राज्य में ट्रॉमा सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। जदयू प्रदेश मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में नए ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना के गांधी मैदान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के नव नामांकित 5,000 गृह रक्षकों का पासिंग आउट परेड आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की महानिदेशक शोभा ओहटकर समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के फ्यूल फिलर कैप के आसपास चीटियां जमा हो रही हैं। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा झूठा है और E20 ईंधन को चीटियों के आकर्षण से जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यूनिट ने कहा कि E20 ईंधन में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होता है जिससे चीटियां या अन्य कीड़े वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास इकट्ठा हों।

0: समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून अब भी कमजोर बना हुआ है, हालांकि स्थानीय कारकों के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आज भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं अररिया, किशनगंज और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए कल आयोजित परीक्षा में 37 अभ्यर्थी कदाचार में संलिप्त पाए गए, इनमें से 28 को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सबसे अधिक दरभंगा में 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बिहार पुलिस ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को तय मापदंड के अनुसार सुरक्षा दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार पुलिस ने कहा कि वर्तमान में दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को अलग अलग अंगरक्षक, आवास कार्ड, एस्कॉर्ट कार्ड और पायलट के अतिरिक्त बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा सादे लिबास में भी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। भोजपुर के शाहपुर में पुलिसकर्मियों पर पिस्तौल तानने वाले युवक की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि युवक पुलिस पर रुक रुक कर फायरिंग कर रहा था। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, इस दौरान युवक के पैर में गोली लगी। पीएमसीएच में इलाज के क्रम में युवक की मौत हो गई। मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जाता था। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। वहीं पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज का स्थापना दिवस भी आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर भी समारोह में शामिल होंगे। पूर्व विधायक अंबिका यादव का निधन हो गया। वे कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। राजगीर मलमास मेले में इस बार 3,82,00,000 श्रद्धालु पहुंचे। मेले की समाप्ति पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी श्रद्धालु राजगीर पहुंचे और ब्रह्मकुंड समेत अन्य पवित्र कुंडों में आस्था की डुबकी लगाई। नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शरण मंदिर के पास एक बस में करंट दौड़ने से एक दंपति की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य झुलस गए। वहीं जिले के तिलहाड़ा थाना क्षेत्र के गंगा बीघा पुल पर एक मोटरसाइकिल और ई रिक्शा के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भू अर्जन कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक आकाश को सेवा से बर्खास्त

0: कर दिया है। उसे पिछले दिनों 30,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा खुर्द गांव से पुलिस ने 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 1 मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, राज्य में पीपीपी मोड पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को मंजूरी, कैमरे से 500 स्थानों पर यातायात की निगरानी। दैनिक जागरण ने लिखा है, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन खरीद बिक्री को मिली छूट। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, अगले माह से हर प्रखंड के सरस्वती विद्यानिकेतन में पढ़ाई। दैनिक भास्कर लिखता है, कॉलेजों में पढ़ाई के साथ नौकरी, 12,300 का स्टाइपेंड। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पटना टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र होगा। आज अखबार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा होगा। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आने वाले रैयतों को विशेष परिस्थितियों में जमीन की खरीद बिक्री और लीज की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के प्रमाण पत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से 1 साल तक के लिए मान्य होगी। और मौसम विभाग की आज भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में लू की चेतावनी। उत्तर पूर्वी जिले अररिया, किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। साहित्य के कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे 10:05 पर। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा नशा की बढ़ती प्रवृत्ति एवं हानियां। वार्ताकार होंगे ददन पांडे। आपको एक और वार्ता सुनाएंगे, विषय होगा बालपन के कितने पास कितने दूर, आज के बाल साहित्य। वार्ताकार होंगे डॉक्टर चंद्रमा सिंह। भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार सुनिएगा 10:45 पर। शाम 5:05 पर हम पुनः हाजिर होंगे कार्यक्रम वंदन लेकर सुनिएगा 5:10 पर। युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर हम हाजिर होंगे 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज बातें होंगी पर्यावरण के अनुकूल खान पान। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम सुनिएगा 6:00 से। भोजपुरी समाचार बुलेटिन आपको सुनवाएंगे 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यक्रम किसान वाणी लेकर हम हाजिर होंगे 6:10 पर। भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे 6:40 पर। गुड इवनिंग रोहतास सुनिएगा 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 7:25 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद आपको सुनवाएंगे 7:50 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा हम पेश करेंगे 9:00। गजलों की महफिल सजेगी 9:15 पर। एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसरंग सुनिएगा 10:00। और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने सुनना भूलिएगा 10:30 पर।

अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। गीत मालिका कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फूल और कांटे फिल्म का गाना। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

सलामी फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाज़ें थी को आशा भोसले और कुमार सानू की, मदन पाल की रचना थी, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रंग से, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ गीतमाली का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना

0: ही गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दांस।

सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दान सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन डेढ़ बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दान सिंह की प्रतिभा

0: आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दानसिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना।
1: गोरा गोरा।

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल ना जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल ना जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल ना जाना का।

0: फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।
1: मेरे हम नहीं

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल न जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली

0: एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी और सेक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।
1: वो ते...

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माई लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में

0: सी फेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वादा शामिल है। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए वार्ता। विषय है नशा की बढ़ती प्रवृत्ति एवं हानियां। वार्ताकार हैं ददन पांडे।
3: नशा मानव शरीर के लिए काफी हानिकारक है, लेकिन कोई भी नशीला पदार्थ जब किसी व्यक्ति के जीवन में आदत के रूप में प्रवेश करता है, तब व्यक्ति उस नशीले पदार्थ का गुलाम हो जाता है। उसे नशा करने की लत लग जाती है और फिर वह व्यक्ति नशा पान किए बिना नहीं रह सकता। यह एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात यह है कि नशा पान करने का शिकार व्यक्ति नशीले पदार्थ की मात्रा लगातार बढ़ाता जाता है, जिससे उसके शरीर की तंत्रिका प्रभावित होती है और मानव स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। नशीले पदार्थ के सेवन से जहां मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वहीं वह आर्थिक रूप से भी काफ़ी खर्चीला होता है। लेकिन आदत से लाचार होकर व्यक्ति कोई भी उपाय करके नशीले पदार्थ को प्राप्त करता है। समाज में नशा पान को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी नशा में डूबा कोई व्यक्ति अन्य बात सोच नहीं पाता और वह हर हाल में नशा पान करना चाहता है। नशा के चक्कर में कई परिवार उजड़ जाते हैं और आर्थिक दुर्दशा हो जाती है।

जाती है। नशीले पदार्थों में शराब, गांजा, भांग, अफीम, हेरोइन, कोकीन जैसे पदार्थ शामिल हैं। नशीले पदार्थों के व्यापार में काफ़ी मुनाफा होता है। यह कारोबार पूरी तरह अवैध है, किंतु अत्यधिक मुनाफा के कारण यह धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक साजिश के तहत इस धंधे में शामिल व्यक्तियों द्वारा किशोर बच्चों को नशा पान कराकर इस जाल में फंसाया गया और धीरे धीरे इस जाल में बड़ी संख्या में लोग आते गए और नशा के कारोबार का दायरा बढ़ता गया। नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार को रोकना आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकारों ने अनेक उपाय किए, किंतु इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। कुछ नशीले पदार्थ जैसे शराब, गांजा, भांग आदि मानव शरीर के लिए कम खतरनाक हैं और उसे सीमित मात्रा में लेने से अधिक हानि नहीं होती। इसीलिए इन पदार्थों की बिक्री सरकार भी कराती है और इसका लाइसेंस देती है। इससे सरकार को अच्छी आमदनी भी होती है, लेकिन शराब ने भी अनेक परिवारों को उजाड़ा है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। इससे आजीज महिलाओं ने कई बार गाँव में शराबबंदी आंदोलन भी चलाया और सफलता भी हासिल की। लाइसेंस के अतिरिक्त गांव देहात में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने का धंधा होता है। इसी से कई बार जहरीली शराब के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके अलावे हेरोइन और कोकीन जैसे पदार्थों की बिक्री और सेवन दोनों पर पूर्णतः रोक है, फिर भी इसका अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। इन नशीले पदार्थों के व्यापार संचालन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े माफिया लगे हुए हैं और उन्हें कई बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इस वजह यह धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। काफ़ी मुनाफा होने के कारण इस अवैध धंधे में अनेक सफ़ेदपोश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हैं, जिनके बल पर यह कारोबार फल फूल रहा है और नई पीढ़ी को अपाहिज बनाने का कार्य चल रहा है। कम उम्र के लड़कों को इस कारोबार में आसानी से फंसाया जा सकता है और इसी का लाभ उठाकर इसके कारोबारी अपने धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम बना रखे हैं, लेकिन इस धंधे पर रोक लगाना अब तक संभव नहीं हो सका है। इस पर रोक लगाने के लिए जनता में जागृति आवश्यक है और नशा के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाना होगा। नशे की लत में डूब चुके लोगों की समस्या बीमारी जैसी है, उसे छोड़ने का उपाय इलाज ही है। बिना इलाज कोई व्यक्ति नशा पान से मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि नशा से उसके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव हो जाता है कि उसके बिना वह व्यक्ति सहज नहीं रह सकता। नशा का शिकार व्यक्ति नशा के अभाव में असामान्य हो जाता है और असहज व्यवहार करने लगता है। उसकी चैन समाप्त हो जाती है, उसे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। ऐसी स्थिति में नशा पान की आदत वह धीरे धीरे ही छोड़ सकता है और बिना इलाज वह नशा मुक्त नहीं हो सकता। चिकित्सक दवा के द्वारा नशा पान छुड़ाने का कार्य करते हैं। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी नशा के शिकार लोगों को नशा छुड़ाने के लिए अस्पताल चलाती हैं और उन्हें नशा छुड़ाने में सहायता करते हैं। नशा पान रोकने के सरकारी प्रयास अब तक नाकाफी रहे हैं। नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री में लगे अनेक लोग कानून के हवाले किए गए हैं, उन्हें सजा भी हुई है। कानून की सीमा में प्रशासन ने जो प्रयास किए हैं उसमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है।

इस अवैध धंधे में शामिल लोग कानून के पेंच का लाभ उठाकर बचते भी रहे हैं। कानून के भरोसे इस बड़ी समस्या पर काबू पाना संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास करना होगा, तभी नशा में डूबे व्यक्ति को इससे निकाला जा सकता है और नई पीढ़ी को इसमें डूबने से रोका जा सकता है। नशा के प्रभाव से युवा पीढ़ी अपाहिज हो रही है, यह भविष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। क्योंकि नशा की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, इस वजह इस पर रोक लगाना अत्यंत जरूरी है। इसके अलावे पान, मसाला, तंबाकू और सिगरेट भी नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक हैं। इन पदार्थों के सेवन से कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए सामाजिक रूप से लोगों को सचेत करने और इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है।

0: अभी आप सुन रहे थे, वार्ता विषय था नशा की बढ़ती प्रवृत्ति एवं हानियां। वार्ताकार थे ददन पांडे। लीजिए सुनिए एक और वार्ता, विषय है बालपन के कितने पास कितने दूर, आज के बाल साहित्य। वार्ताकार हैं डॉक्टर चंद्रमा सिंह।
1: हिंदी का बाल साहित्य 100 वर्षों से भी अधिक पुराना हो गया है। उसके संदर्भ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज का बच्चा 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। उसकी इच्छाएं, पसंद नापसंद और सरोकार भी बदल गए हैं। उसकी मानसिकता को समझते हुए हमें वह बाल साहित्य रचना होगा जो इसे संस्कार देते हुए नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सके। लगभग 7 दशक पहले पत्र पत्रिकाओं ने इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। कुमार पत्रिका के जनवरी 1940 के अंक के संपादकीय में कहा गया था, हमारा सदैव से यह दृष्टिकोण रहा है कि हम अपने बालकों को वाद विवादों के चक्कर में न डालकर उनके सामने केवल वैज्ञानिक सामग्री प्रस्तुत करें जिससे उन्हें मानवीय जीवन और संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाने में सहायता मिले। फ्रांस के सुप्रसिद्ध विद्वान रूसों का कहना है कि बालक का मन शिक्षक की पाठ्यपुस्तक है जिसे उसके पहले पृष्ठ से लेकर अंत तक भली भांति अध्ययन करना चाहिए। दूसरी ओर आयु वर्ग और शिक्षा मनोविज्ञान पर विचार करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल दिया है कि अवस्था के अनुसार बच्चों का अपना पृथक अस्तित्व होता है। जो स्वतंत्र होते हैं उनके मनोविज्ञान को समझना आसान नहीं है। तभी तो खलील जिब्रान ने कहा है कि तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन विचार नहीं, क्योंकि उनके पास अपने विचार होते हैं। तुम उनका शरीर बंद कर सकते हो लेकिन आत्मा नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा आने वाले कल में निवास करती है। इसे तुम नहीं देख सकते हो, सपनों में भी नहीं देख सकते हो। उन्हें अपनी तरह बनाने की इच्छा मत रखना, क्योंकि जीवन पीछे की ओर नहीं जाता है और न बीते हुए कल के साथ रुकती है। बच्चों के लिए लेखन आसान नहीं है और मनोविज्ञान को समझने बिना बाल साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। तथ्य तो यह है कि बाल साहित्य का लक्ष्य बच्चों के

मानसिक स्तर पर उतरकर उन्हें रोचक ढंग से नई जानकारियाँ देना है। यदि बच्चों में कल्याण भावना और सौंदर्य परख दृष्टि जागृत करनी हो तो उनकी समस्त आकांक्षाओं और जिज्ञासाओं का स्कूली शिक्षा के साथ ही विकास आवश्यक है। बच्चों के चंचल मन और जिज्ञासाओं को प्रेरित करने का मुख्य साधन बाल साहित्य ही है। बाल साहित्य की अपने पाठकों तक सीधा पहुंच नहीं है। दरअसल बाल साहित्य का पाठक वह वर्ग है जो कहीं से भी किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं है। निम्न वर्ग की बात तो छोड़िए, मध्य वर्ग और सुविधा संपन्न उच्च वर्ग के भी बच्चे अपनी इच्छाओं से कोई भी पुस्तक या पत्रिका खरीद सकने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि पूरी तरह अपने अभिभावकों पर निर्भर रहते हैं, जिस कारण बच्चों के साथ न्याय प्राप्त नहीं होता। महानगरीय संस्कृति में या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण विगत 61 वर्षों में बच्चों के विकास में सांस्कृतिक बदलाव आया है। उनकी अनदेखी करना सच्चाई से मुंह फेरना होगा। हमारे बच्चों ने प्रगति की है तो उनके सामने आज नई नई समस्याएं भी है। विकास की सीढ़ी यदि शिखर पर ले जाती है तो वह उनमें फिसलना भी पैदा करती है, जो बच्चों के भविष्य के लिए घातक भी बन सकती है। यह सही है कि हमने बच्चों को भविष्य की चुनौतियाँ के लिए तैयार तो किया है, लेकिन हमें इतना ही सावधान भी रहना है कि वे उपलब्ध सुविधाओं का दुरुपयोग न करने पाए। भविष्य की चुनौतियाँ गंभीर है। समाज, संस्कृति, जीवन मूल्य सभी की दृष्टि से बच्चों के सामने अनेक प्रश्न है और हमें बच्चों को उनसे जूझने के लिए सशक्त बनाना है। अब आवश्यकता है कि दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए। यदि हम हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के विकास के प्रति सचमुच गंभीर हैं तो हमें शुरुआत बाल साहित्य से ही करनी होगी। यदि हमें सब सुसंस्कृत समाज का निर्माण करना है तो बाल साहित्य को उचित महत्व और उसके माध्यम से बच्चों को साहित्यिक संस्कार देना ही होगा। देश में शिक्षा नीतियां तो बनी, किंतु उन पर राजनीतिक विचारधाराओं के प्रभाव का वर्चस्व रहा, लेकिन बच्चों के मानसिक विकास में शिक्षा पद्धति के बदलावों ने गुणात्मक विकास किया। महानगरों, शहरों, कस्बों और गांवों तक के बच्चों में सभी कुछ जानने की जिज्ञासा बलवती हो उठी। बिजली कैसे आती है, टेलीफोन पर आवाज़ कैसे आती है, साइकिल कैसे चलती है, हवा क्या है, पानी क्या है, जीवन क्या है आदि के बारे में अनेक जिज्ञासाएं उभरी और बच्चों ने उनसे उत्तर मांगे। मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज ने भी जिज्ञासाएं जगाई। बच्चों का नई दुनिया से परिचय शुरू हुआ। वे हर जिज्ञासा की गहराई तक पहुंचने को उत्सुक हुए तो उन्हें विज्ञान की शिक्षा दी गई। उनके प्रश्नों के समाधान करने वाली पुस्तकें छपी, लेकिन उसी के साथ देश में जो औद्योगिक, सामाजिक और प्रशासनिक विकास हुआ उनसे भी बच्चों को प्रभावित किया। आज़ाद भारत में बच्चे का परिचय लेमन चूस, टॉफियां और बिस्कुटों से हुआ। बच्चों के खान पान में परिवर्तन आया। हरित क्रांति ने अनाज उत्पादन पर बल दिया तो बच्चों

0: ने कृषि विज्ञान की ओर ध्यान दिया। श्वेत क्रांति आई तो दूध का महत्व बढ़ा। बच्चों ने विकास की इन सीढ़ियों को देखा जिससे उनके सोच में बदलाव आया। उन्होंने घर परिवार मोहल्ले नगर आदि के प्रति अपने कर्तव्य बोध को जाना। वहीं उनमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आया। इन सब के परिणाम स्वरूप बच्चे सोचने लगे तो वे बड़े होकर क्या बने। राष्ट्रीय आंदोलन के समय हर बालक गांधी नेहरू अंबेडकर पटेल बनना चाहते थे, किंतु आज़ादी के बाद जैसे जैसे विकास हुआ, बच्चों ने जहाज चलाने से लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने की कल्पना की। डॉक्टर कलाम, कल्पना चावला, किरण बेदी बनने का ख्वाब देखा। 61 वर्ष की अवधि में बच्चों ने जमीन से अंतरिक्ष में छलांग लगाने की कल्पना की और उसे साकार कर दिखाया। विगत 15 वर्षों में बच्चों की दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी ने हलचल मचा दिया। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि ने जहां उन्हें अधिक प्रखर और प्रतिभावान बनाया है, वहीं अनेक खतरे भी खड़े कर दिए हैं। मोबाइल फोन के दुरुपयोग और गंदी वेबसाइटों से जुड़े अनेक अपराधों में लिप्त बच्चों ने नई नई समस्या खड़ी कर दी है। सेक्स संबंधी जानकारियों का खुलेआम उपलब्ध होना बच्चों के विकास में एक नई बाधा बन गया है, जिससे बच्चों कम उम्र से पहले जवान हो रहे हैं और अनेक अपराधों एवं कार्यों में लिप्त हो रहे हैं। इन सबसे बच्चों में नई दुनिया, नए भारत की जो कल्पना उभरी है वह उत्साहजनक है तो चिंताजनक भी है। प्रसन्नता की बात है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में संपन्न विश्व हिंदी सम्मेलन में भी बाल दिवस की अनुगुंज सुनाई पड़ी। इस सम्मेलन में हिंदी के बाल साहित्य पर अलग से एक सत्र का होना इस बात का परिचायक है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बाल साहित्य का महत्व स्वीकार कर लिया गया है। धन्यवाद।
1: साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे वार्ता। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रसधार कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए भोजपुरी एल्बम गीत, आवाज़ मुन्ना सिंह की।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

रसधार कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम गीत। आवाज़ थी भरत शर्मा व्यास की। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाए इस भक्ति गीत के साथ।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए विशाल मिश्रा का गाया ये ओगा फिल्मी गीत। इसे लिखा है कौशल किशोर ने और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने ही।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका हैं दिलराज कौर।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद किया हुआ ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम सावरी की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक

0: सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित। पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में 2रे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल

0: रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार जी। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूं कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर। नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं, डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफी सुरक्षित और आसान हो गई है और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताजी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना?

तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माई गई हैं, और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं, और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है, यानी मैंने जो इबारत लिखी है, दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे काव्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं, वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु, मल्ला या आदि।

आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी मांझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का, वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नज़र में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो हैं कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला के एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद। और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की, ये फिल्म है सवेरा, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास साहस धैर्य सत्कर्म सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार

0: प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। इसके लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। इसके लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.centralbank.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। सूचना, रोजगार से संबंधित सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार के लिए आइए अब हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक

0: सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति

0: बीच सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ।

0: शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें,

0: तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर हैं लता मंगेशकर और साथियों के, फिल्म का नाम दो दिल।

0: मन की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, पहली जुलाई से सुबह

0: और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका है।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: जी हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे जो त्योहार होते थे तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से उस संगीत से जो लोक संगीत था वहाँ का उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल, और वो पूरा जो माहौल था ना वो बचपन से उनको मिल गया था और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते हैं, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवी कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो, और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था और गाँव के स्कूल में पांचवी कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई इतनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में

0: भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे। गांव में खासतौर पे ऐसा हुआ करता था। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहाँ उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी, और वो
0: जुड़ी हुई नहीं, वो ए श्रेणी की
1: कलाकार थी। देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। हाँ। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डर और फोन करना, ओ सियाली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारेजू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताई भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि भाई सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान

0: की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
1: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल कई लोग निकालते हैं, तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज
0: बिल्कुल।
1: खरीद
0: और
1: लेते
0: कई बार
1: हैं।
0: ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती,
1: जी
0: या रंग एकदम अलग होते हैं उससे,
1: हाँ
0: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी
1: अब
0: होते हैं।
1: रंग की तो जब आपने बात कही तो मान लीजिए आपके और मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीजें हम खरीद सकते हैं ना, तो
0: बिल्कुल।
1: हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने
0: हाँ,
1: पड़ते
0: और
1: हैं।
0: लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे मंगा, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में उसे वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं, वापस नहीं हो सकता है ये।
1: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस
0: और
1: तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से
0: पहले
1: पढ़कर
0: से पढ़ना
1: ही,
0: चाहिए।
1: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
0: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
1: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो
1: जी
0: चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता कि
1: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देखने देने के लिए कोई चीज ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है, तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
0: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो जरूरी है, हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें
1: बिल्कुल,
0: जो
1: देने वाले की नीयत
0: बिल्कुल।
1: भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। तो
0: बिल्कुल
1: इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल। एक गीत सुन लेते हैं।

0: पार्थ, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है।
1: बिल्कुल।
0: सेल देख कर खरीद लिए जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसी ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध, दालें, सब्जियां, ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो
1: बिल्कुल
0: सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो

0: हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएं यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीज़ों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
0: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया,
1: जी

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारी श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीज़ों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीज़ों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: देखिए बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब ही आती हैं।
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं जो उनको कभी पछतावा हो।
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी, और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज
1: ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की।
0: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचल जी इतना इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहां रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा

0: सकते हैं।
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद होता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही होता
4: है, ये तो
3: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूं। बिल्कुल बिल्कुल,
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल,
3: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी।
3: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना

0: नाश्ता बनाया तो वो क्या करते, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आती
1: तो है।
0: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद गिरी है तो वो ना हो,
1: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंदते समय गुनगुने पानी या थोड़े से दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
0: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
1: वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ
0: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून, जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है, जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य, जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन है उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल्दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने
1: बस
0: तो
1: 4-5 ही
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं इसके 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत के बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाना?
1: नहीं नहीं मैम, चलो नहीं नहीं पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चले गर्मी भी है, लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा?
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है,
0: अड़तालीस
1: नॉर्मल सी लगती
0: जी।
1: है।
0: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्थर की तरह की नदियाँ हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे मान
0: वो,
1: जी आपको पता है ये पहलगाम
0: हाँ,
1: कश्मीर में पड़ता,
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के
1: ठंडा
0: मौसम
1: पानी।
0: में गए थे। अच्छी बात यह है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने, बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास, वो आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 1967-68 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
0: हाँ,
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे
1: वाल वाले रेडियो,
0: क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं, अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया धीरे।

0: करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
1: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे
0: हाँ,
1: ही है।
0: सुनना तो नहीं रहा अब तो, सुनना तो और ज्यादा होगा क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
1: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप। और
0: हाँ मोबाइल।
1: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध
0: हाँ
1: भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
0: दिक्कत होती थी, हाँ इधर से
1: है
0: उधर तक
1: ना
0: नहीं लगता था।
1: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
0: हाँ वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था, और इतने
1: जी
0: उतने सारंगी वगैरह इतने भी उसका उस टाइम तमाम मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का, ढोली
1: बिल्कुल।
0: हारमोनियम भी इतने अच्छे लगते थे।
1: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते हम तक बारिश।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है।

0: आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
0: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
1: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
0: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं, मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है।
1: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
0: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, बस इतनी दो लाइन बोलने की।
1: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: मक्खन घी दही सब कुछ।
1: क्या बात है,
0: चलता है फिर तो।
1: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
0: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया।
1: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
0: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
0: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
0: जी देखी है जी मैंने फिल्म।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकिजा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है।
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है, आज धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे पीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम पीली पे लगा, मतलब उसमें लगाते
0: जो
1: हैं।
0: डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे आप गुनगुनाएंगे तो।
1: आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हम

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी। गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक से, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टहके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर। लेकिन
0: हाँ, हाँ,
1: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल
0: आजाद
1: बिल्कुल
0: रखना भी चाहिए। तो आपका तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुश।

0: थे मोर, लेकिन
1: हाँ, हाँ,
0: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
1: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है कैसे बोलना है, वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
0: बिल्कुल,
1: आजाद
0: बिल्कुल।
1: रखना भी चाहिए। तो आपका तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
0: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
1: कहाँ काम करते हैं?
0: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
1: अच्छा,
0: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
1: अरे वाह,
0: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
1: हाँ,
0: अच्छा लगता है।
1: वाह,
0: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते हैं, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
1: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा सुंदर
0: बिल्कुल
1: लगता है ना।
0: मोरों के बीच में गाँव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
1: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
0: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में जुआर है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, जुआर, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
1: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है क्योंकि?
0: बिल्कुल, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
1: तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
0: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
0: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है,
1: हाँ।
0: जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
1: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
0: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
1: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुंवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठाकर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
1: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडीहा जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे को लेकर।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10-10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे, हम आम खाने के लिए।
0: जी, और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ, बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है,
1: जी
0: बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ, लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी, बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टॉवेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की
1: जी
0: देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सब्जी के जो छिलके होते हैं
1: जी
0: उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया
1: जी
0: जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी
1: जी
0: करती हैं
1: जी
0: तो।
1: जी और हमारे इधर तो हम लोग गांव में हैं तो घर में जैसे कि गाय है भैंस है तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि गड्ढा खन के मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं
0: ये तो बहुत बढ़िया
1: खाद के
0: खाद
1: रूप
0: होता
1: में।
0: है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी
1: जी
0: होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपके
1: जी
0: गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की, बताइए कौन से पेड़ पौधे हैं वहां पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ तो धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो
1: जी
0: आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ
1: होता था
0: करता
1: जब
0: था?
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना उस टाइप का था
0: चक्की जात वगैरह,
1: उसमें।
0: चक्री है ना।
1: जी।
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 28670288, और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए पेरिस में फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। श्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के सेंट गोबेन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत

0: स्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडल्फ सास से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोवेद बजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले तीन दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है। यह भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बंबई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 और 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: इफमेंट के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे देते हैं।

देर में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 पर लेकर आएंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। शाम 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत और शाम 6:05 पर आप सुनिएगा पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। शाम 6:10 पर किसान वाणी कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें आज की बातें में वार्ता सुनेगा, विषय होगा खेती में जाने से पूर्व कृषि यंत्रों की देखभाल। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विकास सिंह और इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। नई उम्र की नई फसल में बरसाती सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी मिलेगी और आज की नसीहत होगी धान के बिचड़ों का करें देखभाल। इस कार्यक्रम में आज सूत्रधार होंगे शिव कुमार सिंह और कुमकुम। शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आप आनंद लेंगे और शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा। शाम 7:50 पर हम लेकर आएंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद।

रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा, जो हमारे केंद्र से रिले होगा। रात्रि 9 बजे आप सुनिएगा लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत।

रात्रि 9:15 पर महफिल में गजलों का आनंद आप लेंगे और रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10:00 हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित होंगे रस रंग। रात्रि 10:30 पर आप सुनेगा चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी नगमों को।

रात्रि 11 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा, जो हमारे केंद्र से रिले होगा। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनिएगा रात्रि 11:05 पर, और सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

और श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

स्वागत है आप सभी युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी में। और श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पर्यावरण के अनुकूल खान पान के विषय में। इस कार्यक्रम में गीत संगीत भी हम आपको सुनवाएंगे। तो चलिए, आज का हमारी आज की जो बात होगी वो पर्यावरण के अनुकूल खान पान की होगी। पर्यावरण के अनुकूल खान पान का अर्थ ऐसा आहार चुनना है जो लंबे समय तक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखे और स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम हो। हम जो भी आहार लेते हैं वो पर्यावरण पर निर्भर हो, ऐसा ही पर्यावरण के अनुकूल खान पान होना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी खान पान नहीं लेना चाहिए जिससे हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाए और पर्यावरण में भूचाल सा आ जाए। तो हमें अपना खान पान संतुलित संयमित बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना आहार जो है वो पर्यावरण के अनुकूल रखें। इससे पारिस्थितिकी संतुलन तो बनता ही है, साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। इसमें स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां, पौधे आधारित खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन और भोजन की बर्बादी को रोकना भी शामिल है। यानी कि अगर हम पर्यावरण के अनुकूल खान पान अपनाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारा ध्यान होगा वो पर्यावरण की तरफ होगा, कि हम ऐसा कोई आहार ज़्यादा मात्रा में ना ले जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। यानी कि हम उतना ही ले जितना हमें ज़रूरत हो। अगर हम फल सब्जियों का सेवन करते हैं तो हम उतना ही मात्रा में करें जितना हमें या हमारे परिवार की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अपने थाली में बहुत ज़्यादा फल या सब्जियां ले लें और वो आवश्यकता से अधिक हो और हम उसे कूड़ेदान में डाल दें, तो इससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर फल सब्जियों का उपयोग करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण पर निर्भर होते हैं और इससे हमारा संतुलन बिगड़ता है। इसी तरह खाद्य पदार्थ भी हो गया। अगर हम चावल गेहूं अनाज का उपयोग कर रहे हैं तो हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो, यानी कि हमें उतना ही पकाना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है, हमारे परिवार को भोजन की आवश्यकता है। ऐसा न कि अगर हम 100 ग्राम खाने का अगर हम क्षमता रखते हैं तो हम 250 ग्राम बनाएं तो वो वेस्ट होता है, और वेस्ट होगा तो इससे हमारा पर्यावरण का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा। तो अगर हम सीमित मात्रा में संतुलित मात्रा में अपने भोजन को रखते हैं तो इससे भोजन की बर्बादी तो रुकती ही है, साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहता है। पर्यावरण के अनुकूल खान पान अपनाने के लिए हम प्रमुख उपायों को भी अपना सकते हैं जिस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन गाने तो हमारे कार्यक्रम की जान होते हैं। तो सबसे पहले सुनवाते हैं आपको ये गाना, उसके बाद हम बात करेंगे आगे।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ब्रेक के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपका पसंदीदा जो कि है युवाड़ी। श्रोताओं हम बात कर रहे थे पर्यावरण के अनुकूल खान पान की, तो हमें पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण के अनुकूल ही खान पान अपनाएं, तभी तो हम लंबे समय तक शुद्ध वातावरण में जी पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे संतुलित पर्यावरण में। पर्यावरण के अनुकूल खान पान अपनाने के लिए हम बात कर रहे थे कि हम कुछ उपाय को अपना सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। उसमें है पौधे आधारित आहार। जी हाँ, हमें प्लांट वेस्ट आहार का ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। मांस और डेयरी उत्पादों के उत्पादन में बहुत अधिक पानी, भूमि और अनाज की आवश्यकता होती है। पौधों पर आधारित आहार जैसे फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, दालें पर्यावरण पर कम दबाव डालते हैं, तो इसलिए हमें मांस या डेयरी उत्पादों की तरफ बहुत सोच समझ कर अपनाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें फल सब्जियों पर निर्भर होना चाहिए। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ, अपने स्थानीय क्षेत्र में पैदा होने वाले और मौसम के अनुसार उपलब्ध फल सब्जियों का चयन करें। दूर से आयातित भोजन के परिवहन में भारी मात्रा में ईंधन और कार्बन उत्सर्जन होता है जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें अपने आसपास, यानी कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, तो आप उस क्षेत्र के, उस एरिया के उत्पादित सामानों पर ही आपको निर्भर होना चाहिए पर्यावरण से उपजने वाले। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर हिमाचल में रहता है या उत्तराखंड में रहता है, तो वहाँ के ज़्यादातर लोग फल पर ही निर्भर होते हैं या मोटे अनाज पर निर्भर होते हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पान में अखरोट, बादाम, सेब, इन सब चीज़ों का वो उपयोग ज़्यादा करते हैं। अगर वो सोचे कि हमें और प्रदेशों की तरह, जैसे कि अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चावल, गेहूं, चना, मक्का, इन सब चीज़ों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो हमारे लिए ये ईज़िली अवेलेबल है, तो हमें इसी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम उत्तराखंड के उत्पादों पर ध्यान देना शुरू करें तो वो हमें ज़्यादा खर्चीला हो जाए।

अगर हम वहाँ के सामान को अपने यहाँ लाना चाहें तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो और अगर वहाँ के लोग हमारे यहाँ की चीज़ों पे निर्भर रहना चाहें कि हम नहीं चावल गेहूँ मक्का चना ऐसे चीज़ों का हम अपना भोजन में अपने भोजन में शामिल करेंगे तो उनके लिए ये महंगा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जिस क्षेत्र में जो चीज़ें उपजती हैं आप उसी पर फोकस करें, आप उसी को अपने भोजन में अपनाएं, तो इससे यातायात की जो समस्या है वो कम होगी। परिवहन में लगने वाला जो पैसा है, ईंधन है, कार्बन उत्सर्जन है, वो सब कम होगा। तो इस तरह हम अपने क्षेत्र की चीज़ों पर निर्भर रह के पर्यावरण को बचा सकते हैं। प्रसंस्कृत और डिब्बा बंद भोजन से भी हमें बचना चाहिए। पैकेट बंद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग कचरा बढ़ाती है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा आजकल प्रचलन में है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोसेस्ड फूड का उपयोग करते हैं, एक तो ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। कई कई दिनों के खाद्य पदार्थ डिब्बे में बंद रहते हैं जो हम

बचना चाहिए। पैकेट बंद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग कचरा बढ़ाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अगर हम जास ज़्यादा आजकल प्रचलन में है, जास ज़्यादा लोग प्रोसेस्ड फूड का उपयोग करते हैं। एक तो ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। कई कई दिनों के खाद्य पदार्थ डिब्बे में बंद रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी अच्छे नहीं होते हैं, और उन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं तो इससे हमारी स्वास्थ्य समस्या प्रभावित होती है, हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। और इस तरह से कचरा भी पर्यावरण में बढ़ता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो हम कोशिश करें कि डिब्बा बंद चीज़ों से दूर रहें, दूरी बनाएं, ताज़े फल सब्जियों का यूज़ करें और अपने क्षेत्र में मिलने वाले ताज़े फल सब्जी अनाजों का यूज़ करें। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और कचरा भी कम से कम इसमें पर्यावरण में बढ़ेगा, तो हमारा वातावरण स्वस्थ और साफ सुथरा रहेगा। हमें भोजन की बर्बादी भी रोकनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही भोजन पकाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, बची हुई सामग्री का उपयोग करें, प्लेट में उतना ही खाना लें जितना की ज़रूरत हो, ताकि दूसरों को भी भोजन आसानी से मिले और भोजन की बर्बादी रुके। इससे पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने से बचेगा। तो इन आदतों को अपनाने से न केवल हम कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, बल्कि अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य में भी दीर्घकालिक सुधार कर सकते हैं। तो चलिए, बातें आगे और भी हम करेंगे, लेकिन सुनते हैं एक और प्यारा गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे पर्यावरण के अनुकूल खान पान की। इसके लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं वो भी आइए जान लेते हैं। अपने बगीचे में फल और सब्जियां उगा सकते हैं, इससे पर्यावरण में हम हरियाली ला सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। पैसे बचाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने फल और सब्जियां खुद उगाएं। यदि आपके पास बाहर जगह है तो छोटे छोटे सब्जी फलों के बगीचे लगाने की कोशिश करें। इससे न केवल आपको मुफ्त भोजन मिलेगा बल्कि अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। इसके अलावा अधिक बचत करने और भोजन के बचे हुए टुकड़ों का सदुपयोग करने के लिए अपना खुद का कंपोस्टर स्थापित होगा। तो इस तरीके से हम पर्यावरण के मित्र भी बन सकते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करें तो। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मांस का सेवन कम करना। पर्यावरण के अनुकूल आहार अपनाने का एक सबसे तेज और अच्छा तरीका है मांस का सेवन कम करना। मांस उत्पादन से होने वाली वनों की कटाई और मीथेन गैस पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। अगर आप मांस खरीद रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वह हार्मोन और एंटीबायोटिक मुक्त हो। पशुपालक अपने पशुओं को ये पदार्थ देते हैं जिससे जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। तो अगर आप मांस का कम से कम उपयोग करते हैं तो आप पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं पर्यावरण अनुकूल आहार अपनाकर। तो अगली बार से ये कोशिश करें कि आप मांस का सेवन कम से कम करें, क्योंकि मांस का सेवन हमारी उम्र को भी कम करता है। शाकाहार शारीरिक स्वास्थ्य का वरदान है, जबकि मांसाहार हमारे जीवन को कम करता है, रोग का घर बनाता है। इसलिए आप पर्यावरण के मित्र बनिए और पर्यावरण के अनुकूल ही आहार को अपनाइए और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। बचे हुए भोजन का भी उपयोग करके हम पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल भोजन का एक बेहतरीन तरीका है बचे हुए भोजन का रचनात्मक उपयोग करना। बचे हुए भोजन को अन्य व्यंजनों में उपयोग करने के तरीकों पर भी विचार कर सकते हैं। इससे आपके द्वारा खरीदा गया भोजन अधिक समय तक चलेगा और साथ ही आपके घर का कचरा भी कम होगा। तो अगली बार से कोशिश करें कि अगर खाना बच जाए तो उसका नए तरीके से यूज़ करें, या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी आप देकर उसकी मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पर्यावरण की भी मदद कर सकते हैं। स्थानीय रूप से उगाए गए टमाटरों का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। इसके अलावा इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, इस प्रकार ये गहरी मिट्टी से पानी प्राप्त कर सकते हैं जिससे इनका जल फुटप्रिंट भी कम होता है। इसलिए आप अपने किचन गार्डन में टमाटर भी लगा सकते हैं, ब्रोकली भी अपना सकते हैं। ब्रोकली आपके स्वास्थ्य के साथ साथ पृथ्वी के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है। यह बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है क्योंकि पौधे का अधिकांश भाग काटा नहीं जाता है। इसके बजाय यह मिट्टी में बायोडिग्रेड हो जाती है जिससे कार्बन हवा में नहीं बल्कि मिट्टी में मुक्त होता है। आलू भी आप उपजा सकते हैं। आलू में कई ऐसे गुण

होते जो पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं। इन्हें अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। एक पाउंड आलू उगाने में केवल 34 गैलन पानी लगता है। तुलनात्मक रूप से चावल की समान मात्रा के लिए 403 गैलन पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आलू को लंबे समय तक बिना खराब हुए संग्रहित किया जा सकता है। तो इस तरह हम छोटी छोटी बातों का, आदतों का ध्यान रख के हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल खान पान में इन सब चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। और अब आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, अब आइए चलते चलते हम बात कर लेते हैं, अगर देश के वीर वीरांगनाओं की जब बात होती है तो उसमें हम रानी लक्ष्मीबाई को कभी नहीं भूलते हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 18 जून 1858 को अंग्रेज़ों के खिलाफ ग्वालियर के युद्ध में झांसी के पतन के बाद उनकी मृत्यु अंग्रेज़ों से लड़ते हुए हुई थी, उनको वीरगति मिली थी, तो हम उनको नमन करते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया था और अपनी सेना का नेतृत्व किया था, साथ ही महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी भी बनाई थी। तो हम उनके संघर्षों को कभी भूल नहीं सकते हैं, उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम सभी नमन करते हैं। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी हम सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं भोजपुरी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए चलते हैं भोजपुरी समाचार बुलेटिन के लिए आकाशवाणी के पटना केंद्र।

प्रणाम, ये आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कन के निर्माण करी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और ओकरा से जुड़ल ग्रामीण संपर्क पहल के तहत गांव के सड़कन के बनावे खातिर 18,900 करोड़ से ज्यादा रुपया आवंटित कल गई बा। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना के प्रगति के जांच करे खातिर एगो उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कल गई। बैठक में बिहार समेत कई गो राज्यन के वरिष्ठ अधिकारी लोग हिस्सा ले लें। सम्राट चौधरी कहले कि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ता। वो कहले कि भाजपा अपना संकल्प के पूरा करे वाली पार्टी ही। मुख्यमंत्री आज पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के पिपलावा में भारतीय जनता पार्टी ओर से आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के संबोधित करे के बेरा ई बात कहले। मुख्यमंत्री कार्यकर्ता लोगन से राज्य सरकार के सहयोग पोर्टल के खूब प्रचार प्रसार करे और लोगन के समस्यान के पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंचावे के अपील कैले ताकि ओकर तुरंत समाधान हो सके। वो आगे कहले कि ऐसे सरकार और जनता के बीच बातचीत और भरोसा और मजबूत होई। श्री चौधरी सीतामढ़ी में बन रहे

0: फल माँ सीता मंदिर के भी जिक्र कैले। उ कहले कि इ मंदिर श्रद्धालु लोगन के आस्था के बड़ केंद्र बनी और एकर निर्माण काम 2019 से पहले पूरा कर लेहल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के दीक्षांत और पारण परेड समारोह में 5,000 नया प्रशिक्षित होमगार्ड जवानन के पासिंग आउट परेड के सलामी लिहले। उ परेड के निरीक्षण कैले। ए मौका पर उ कहले कि जनता के सुरक्षा आफत के समय मदद और कानून व्यवस्था बनावे में होमगार्ड जवानन के भूमिका बहुते महत्वपूर्ण बा और जनता के सेवा ही सबसे बड़ धर्म बा। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के सांसद ललन सिंह आज कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता। वो आगे कहले कि 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनावे के संकल्प के पूरा करे में सब कार्यकर्ता लोगन के महत्वपूर्ण भूमिका बा। ये बात मुंगेर के पोलो मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के संबोधित करे के बेरा कहले। वो कहले कि 12 साल बेमिसाल खाली नारा ना है बल्कि केंद्र सरकार के काम के असली कामयाबी के रूप है। श्री सिंह कहले कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम भइल। वो भरोसा जतौले कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के विकास के काम के और आगे बढ़ई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता SD संजय बिहार के नया महाधिवक्ता नियुक्त कैल गइल बाणेन। इस संबंध में विधि विभाग अधिसूचना जारी कैले बा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उनकर नियुक्ति कैले बाणे। श्री संजय पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हुए। इससे पहले उहो भारत सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी अपन सेवा दे चुकल बाणेन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार श्री संजय के नया महाधिवक्ता नियुक्त भइला पर उनकरा के बधाई आ शुभकामना देले बाणे। भोजपुर जिला के बिटौली गांव में भइल भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामला में कर्तव्यहीनता घोर लापरवाही आ गंभीर चूक कैला के आरोप में शाहबाद प्रक्षेत्र के DIG डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा भोजपुर SP राज के सिफारिश पर शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार सहित 5 पुलिसकर्मी लोगन के तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देहल गइल बा। रोहतास जिला के धनगई में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आत्मा के सहयोग से प्राकृतिक खेती पर जिला स्तरीय कार्यशाला भइल। कार्यशाला में किसानन के जीवामृत बीजामृत मल्चिंग और फसल विधिकरण जैसन तकनीकी के जानकारी दहल गइल। यही बीच प्रधान वैज्ञानिक RK जलल कहले कि प्राकृतिक खेती से लागत कम आवेला और माटी के उपजाऊ और पर्यावरण संरक्षण के बढ़ावा मिलेला। प्रदेश में मानसून अभियो कमजोर बनल बा। हालांकि स्थानीय कारण के प्रभाव से जमुई और बांका के साथ राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सा के कुछ जगहन पर हल्का से मध्यम दर्जा के बारिश भइल। पिछला 24 घंटा के दौरान किशनगंज जिला के गलगलिया में सबसे ढेर 69.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज कैल गई। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान सिवान गोपालगंज भोजपुर बक्सर रोहतास बेगूसराय लखीसराय और मुंगेर जिला में भारी बारिश होखे के चेतावनी देले बा। एकरे साथ है आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एही जा समाप्त भइल।
1: FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार बा। झुनी बहन रवो के नमस्कार बा।
1: नमस्कार जगत भाई और सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम।
0: देखे झुनी बहन
1: जी
0: मौसम ऐसा गड़बड़ चल रहा बा
1: हाँ
0: कि अभी धान के बिजड़ा ना डला पाइल। यह मौसम में आदमी का डालो, जब ऊपर से बारिशें लिखे होखत तो नीचे के पानी से कितना बिया ठीक सह।
1: हाँ, वो धरती एकदम गरम रहता ना।
0: आज देखिए आज लू नियन चलत रहे, गरम हवा। अब सोच ली कि जे भी किसान भाई नहर तरफ जकर खेत बधार बा, ओ में बिया भी अगर डाल दे रहे बड़न तो नहीं खे लागत कि उजी आयु। इसे समय जौन चल रहा बा, हमने के समझ में नहीं आवत खेती बाड़ी में का कोई जाओ। कभी रहता रहता एक कहल पानी बरह जाता, आ पानी तरीका नहीं खबर तो पूरा
1: पूरा आंधी तूफान आ जाता
0: आ जाता और उड़िया ले जाता अंधिया, कहीं कहीं पत्थरे गिर जाता। बहुत सी ऐसा खेती में हमने के जूझे के पड़ता कि समझ में नहीं खेत कि प्रकृति के साथ हमने के खेल खेल रहा। एक चीज़ हमने के देखी बुझा रहा बा कि आज इतना परिस्थिति हमने के काहे दयनीय भइल बा। कारण बा पेड़ के कटाई,
1: कटाई पर्यावरण के दूषित जन हो जाता।
0: बिल्कुल,
1: ना
0: बिल्कुल बिल्कुल पहले आदमी एगो आर पगार पर फेड़ लगावत रहन जरूर फलदार, आज देखी तो कहीं खेत के आधार बधार का दूर दूर तक फेड़ नहीं खेलो का देखे के
1: पेड़ से का होत रहे कि छाया भी मिलत रहे, ओकरा चलते बारिश भी होत रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ओकर पता ही देखी खेत में आके खाद मान भी बनत रहे।
0: एकरा में यही देखे दिक्कत बा कि हर केहू के चाहे कि एक गो पेड़ कम से कम लगाई, समय देखे चल रहा बा एकर लगावे। बरसाते में लगावल जाला, सरकार के तरफ से भी खासकर वन विभाग भी अपन कमर कसले बड़ुए पेड़ के बांटे खातिर।
1: हाँ, पौधा फ्री में मिल रहा है।
0: जी जी, इसे एकर लाभ हमने के लेवे के चाहिए और एकरा खातिर सरकार भी देखी अनुदान भी पर दे रहा बिया, ओकरा के जियावे खातिर
1: बाग बगीचा लगावे खातिर
0: भी एकरा से चुके के हमने के ना चाहिए। अगर एक एक पेड़ भी हमने के लगावते नहीं जा तो जितना भी हमने के गाँव घर में आदमी बढ़ तो निश्चित बाकी हरियाली छा जाए खेत बधार तरफ, तो कहीं भी रह गिरु आके वो पेड़ तर बैठ जिहन तो कहन कि नहीं भाई कुछ छाह तो मिलल ये घाम गरम में।
1: जगत भाई हमने के हर श्रोता लोग से आग्रह करी ला जाए कि कम से कम अपना बेटा बेटी के जन्मदिन के नाम पर या अपना शादी के सालगिरह पर एक अगर पेड़ लगाई तो एक आदमी अपना जीवन में कितना पेड़ लगा दी।
0: लेकिन हमने के सुनत के बा जहा दिन हमने के चेत लिहल जाई कि नहीं पेड़ पौधा जरूरी बा, तैसा दिख ही के ना मिली, न हवा गंदा हुई, न पर्यावरण दूषित हुई और न हमने के पानी के जो असरा देखते नहीं जा वो भी ना हुई। बारिश उस बरसे लगी कि देखिए कुछ समय रहे कि राजस्थान में पानी खातिर लोग तरसत रहे, आज देखिए तो उन्हें पानी की हरियाली के चलते पानी इतना हो रहा बा कि देखे उल्टा हो गई बा सीधे।
1: राजस्थान के बात करी तो हम देखी वहाँ हर घर में देखले बानी, कम से कम एक घर में पांच गो पेड़ जरूर बा।
0: यही कारण भाई उन्हें बारिश लौटी के
1: तो देखे तो बड़ा बढ़िया बातचीत रहा। लेकिन अब तनी चलल जाओ अपना कार्यक्रम के तरफ कि हमने के कार्यक्रम के माध्यम से आज का क्या जानकारी मिले वाला बा।
0: भाई आज जो उन कार्यक्रम हमने के जानकारी करे के बाद सबसे पहले तो खर खबरा जानल जी।
1: जी जी,
0: इकरे बाद आज के बात में खेती में जाए से पहले कृषि यंत्र के देखभाल कैसे कैल जाओ।
1: कुछ बिगड़ल बनल तो नहीं।
0: हाँ, मैंने ट्रैक्टरे भइल, खुरपी कुदारी भइल, फरुए झाम भइल, ओकरा के तैयारी देखभाल जरूरी बा। और एकरा के वार्ताकार बने डॉक्टर विकास कुमार सिंह और यहाँ से भेंट कैल बने डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। नया उम्र के नया फसल में बरसाती सब्जी की खेती कैल जाय, एकरे बाद एगो नसीहत रही धान के देखी बिजड़ा के देखभाल करे के बाद यह मौसम में जैसे कि हमने बत कहीं कोई नहीं जा।
1: जी जी।
0: और एकरे बाद मौसम के पूर्वानुमान कैला के बाद कार्यक्रम के समापन कैल जाए। तो देखे झुनी बहन कुछ खर खबर बात बताई।
1: जी जी, तभी तो हमने के कार्यक्रम से एगो छोटा झलक देखनी जाए। लेकिन अब शुरू कर ली कृषि खबर से। तो श्रोता भाई आज खबर बा

0: रोहतास के नासरीगंज स्थानीय प्रखंड परिसर स्थित कृषि कार्यालय के सभा भवन में बुधवार के यानी कल खरीफ महाअभियान सह प्रखंड स्तरीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल। कृषि विज्ञानी डॉक्टर रामाकांत सिंह आ सासाराम के आत्मा के कृषि पदाधिकारी कृषि प्रज्वलित कैलन आ किसान लोग के प्रशिक्षण के पूरा लाभ उठावे आ आधुनिक खेती के गुर सीखे के अपील कैलन। उ लोग किसान लोग के भरोसा दिलौलन कि सब लाभकारी योजना के आसानी से उपलब्ध करावल जाए आ किसान लोग के धान के नर्सरी तैयार करे के जानकारी भी दिहल जाए। एकरा अलावे मोहनिया में कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा के वैज्ञानिक नीरज कुमार आ मनीष कुमार सिंह किसान लोग के प्राकृतिक खेती करे के सुझाव भी देलन। तो देखी तो रहा किसान भाई लोग खातिर खबर खबरात आए। अब जैसा कि कहनी है कि हमने के मतलब खेत में जाए से पहले जवन कृषि यंत्र के
1: बात तो सही कहल ही। अब देखी इन्हें तो कोनो खेती बाड़ी के काम भइल ना हो और निश्चित बाकी झाम भइल कुदाल भइल ट्रैक्टर भइल ओकर हर फार भइल चाहे कुदाल के धार भइल हसुआ के धार भइल खुरपी के धार भइल ये सब जितना भी चीज बा ओकरा के देखभाल करके तैयारी करी क्योंकि खेत में हमनी के अब जूझे के बाद समय आ रहल बा और यह यंत्र के देखभाल कल जरूरी बा। यह पर जौन पहले बात कही में हमने के डॉक्टर विकास सिंह से एगो वार्ता सुनल जाए तो आवल जाए सुनल जाए।
2: श्रोता सभे खेती का समय चल रहल बा खेती में जाए से पहले हमनी का जौन कृषि यंत्र मानसन ट्रैक्टर होके मोटर होके मशीन होके डीजल होके रीपर होके या सीडर होके स्ट्राबेलर होके या फिर ट्रांसप्लांटर होके पैडी ड्रम सीडर होके एकर देखभाल हो जाए के चाहिए। होला का कि हले बा तो वही तरह घाम में फेंकल बा आ जब हमनी के उपयोग कर चलनी जा तो पता चल के ओकर फार टूट गए। तो खेती में जाए से पहले हमनी के का तैयारी करे के चाहिए। आज जोताई का जरूरत बा आ पता चल कि ट्रैक्टर बिगड़ के रखल बा फिर गई मैकेनिक के हैं तब तक पानी खत्म हो गई रोपनी वही तरह बंद हो गई। तो खेती में जाए से पहले हमनी के अपना मशीनन के बिल्कुल तैयारी रखे के चाहिए। कैसे तैयारी होके के चाहिए एकरा खातिर एकरा जानकारी देवे खातिर हमारा संगे बानी डॉक्टर विकास सिंह यहाँ का सहायक प्राध्यापक बानी कृषि अभियंत्रण का कृषि विभाग गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार रोहतास में। डॉक्टर विकास सिंह जी आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत बा। पहले तो ये बताएं कि सामान्य जौन देखभाल बा कृषि यंत्रण का एक जौन किसान बा ओकरा के का सावधानी अपनावे के चाहिए खेती में जाए से पहले।
3: खेती में जाए से पहले कृषि यंत्र के देखभाल बहुत ही जरूरी बा काहे कि कृषि यंत्र में बहुत दुर्घटना भी होए के चांस रहेला हमारे जीवन के क्षति भी हो सकेला और भी बहुत तरह के कृषि यंत्र के भी नुकसान हो सकेला। तो एगो समान उपाय अगर हम बताई तो कोनो कृषि यंत्र चलावे से पहले ओकर जो ऑपरेटर मैनुअल बा ओकरा के बढ़िया से पढ़ ली काहे कि कंपनी जौन कंपनी के बा उ ऑपरेटर मैनुअल में डिटेल्ड ओकर लिखल रहेला कि का करे के बा स्टेप बाय स्टेप चाहे कोनो में घूमे वाला पार्ट बा तो ओकर नट बोल्ट चेक करे के बा कि ना कोनो लुब्रिकेंट अगर आयल बा तो ओकरा बढ़िया से चेक करे के बा अगर हाइड्रोलिक आयल में फिल होता तो हाइड्रोलिक आयल में भरे के बा। तो ऐसन कोनो अगर मैनुअल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कइल गइल बा तो स्टार्टिंग से सबसे पहले किसान भाई के ओकरा के सुरक्षित रखे के बा ओकर एक दुगो फोटो कॉपी करा के बढ़िया से अपना भीड़ रख लेवे के बा ताकि वो मशीन में पैसा लागल बा मशीन बहुत दिन यूज करे के बा उ मैनुअल के हमेशा फॉलो करे के बा। दूसरा अगर बात कही जाए तो अगर ओमे कोनो घूमे वाला मशीन में कोनो पार्ट बाटे तो वहाँ पे जौन लुब्रिकेंट जौन चिकनाई वाला डाले के बाटे उ मैनुअल में जौन लिखल बा ग्रीस बाटे चाहे कोनो लुब्रिकेंट आयल बाटे तो ओकरा उहे स्टैंडर्ड क्वालिटी के डाले के बा ताकि अगर ओमे कोनो घर्षण के कारण कोनो पार्ट्स के टूटल फूटल भेल तो वो लुब्रिकेंट आयल से बाहर निकल जाए वो हमार मशीन के आगे फिर खराबी मत करे चाहे ओकर अगर इंजन से ओकर लिंक बात इंजन के डिस्टर्ब ना करे चाहे मशीन के अंदरूनी कोनो चोट ना पहुंचा देवे जैसे

0: हमार उतना महंगा यंत्र खराब हो सके।
1: जी जी, देखिए हमनी का सामान्यतः गांवन में या खेतन में जो उपयोग करे वाला मशीन बा उ ट्रैक्टर बा, बहुत सारा किसान रखले भी बान ओकरा के, आ जे ट्रैक्टर नहीं रख पावले उ पावर टीलर रखले बा।
0: जी जी,
1: तो ट्रैक्टर में हमनी के का सावधानी बरते के चाहिए, कितना घंटा पर मेंटेनेंस करे के चाहिए, कितना घंटा पर ओकरा में पानी डाले के चाहिए, तेल डाले के चाहिए, का ध्यान देवे के चाहिए, एकरा बारे में विशेष रूप से बताई हमारा किसान भाई लोग के।
0: देखिए सबसे पहले तो ट्रैक्टर अगर केहू किसान भाई रखले बा तो हम उनका से सबसे पहले अनुरोध करम कि ट्रैक्टर सही से चलावे पहले कौन एक्सपर्ट से सीख ली। ट्रैक्टर के साथ कौनो लापरवाही ना करे के चाहिए। ट्रैक्टर में बहुत सारा यंत्र, बहुत सारे पार्ट्स घुमा वाला बा, तो उसे कौनो लापरवाही ना करे के चाहिए। अब जब ट्रैक्टर रखले बानी, जौन कंपनी के रखले बानी, ओकर मैनुअल पूरा तरीके से फॉलो करी, और एगो जनरल जौन प्रिकॉशन होला, जो सामान्य सावधानियाँ होला, अगर ट्रैक्टर हमार 8 से 10 घंटा चल लेलस तो ट्रैक्टर में जो भी आयल के जहाँ जहाँ क्रैंक केस बाटे, चाहे जहाँ आयल नीचे भरल जाला, ओकर लेवल जौन स्टैंडर्ड बाटे उ ट्रैक्टर में उ चेक कर ली। काहे कि उहे तेल के भरोसे बाकी ओकर जो इंजन के जौन पार्ट्स बाटे, अलग अलग जौन पार्ट्स होला, क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन, जो इंजन के अंदर होला, उहे तेल से सहारे घूमेला और ओकरा में कोनो घर्षण के कारण कोनो टूटे फूटना होला, तो वो लेवल के जरूर चेक कर ली। अगर ट्रैक्टर के जो क्रैंक केस बाटे, चाहे नीचे जो आयल वाला जो टंकी बाटे, ओ में अगर नीचे कोनो सेडिमेंट जम गइल बा, चाहे बालू उलू की जम गइल बा, तो ओकरा के जोन सेडिमेंट एगो होल होला ओकरा से निकाल दीही। ट्रैक्टर के टंकी के फुल कर ली अगर जरूरी बाटे, तो रेडिएटर के सही टाइम टाइम पे चेक कर ली, क्योंकि रेडिएटर जैसे हमनी के मानव खाती हमनी के कूलिंग सिस्टम जरूरी होला। गर्मी अगर ढेर लागे लागे तो देखी ना कि पूरा बॉडी हमनी के खराब होए लागेला, तबियत खराब हो जाला। वैसे ही ट्रैक्टर में बा, अगर कूलिंग ना कइल जाए तो इंजन में इतना गर्मी होला कि वो अपने गर्मी से ओकर पार्ट से गला के चाहे खराब कर दी, ओकर एफिशिएंसी बहुत घटा दी। एगो समान तौर पे ये कहल जाला कि अगर इंजन 100% ऊर्जा जनरेट करेला, प्रोड्यूस करेला, तो ओकर 40% वो अपन एग्जॉस्ट गैसेस, मतलब जौन धुआं जल के बाहरी निकलेला ओकरा से निकल जाला, बाकी 30% हमनी के ठंडा करके ओकरा के बर्बाद करनी जा, बाकी 30% जा जौन कि हम यूज कर पावी ना, काहे कि हमार सिस्टम अभी इतना एफिशिएंट नहीं भइल कि 90 में 100% यूज कर पाए। वो हमारा 30% कूलिंग करे के हल ही बा, उतना हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ल नहीं है। तो ऐसे हम रेडिएटर के अच्छे से चेक कर ली, रेडिएटर में अगर पानी भरल बा कि पानी नहीं के भरल, वो रेडिएटर टैंक के सही से चेक कर ली, फैन के चेक कर ली, रेडिएटर बेल्ट के चेक कर ली, हमार जोन फ्यूल पाइप बाटे ओकर जोन बेल्ट बाटे ओकर टाइटनेस चेक कर ली। ई सब हम 8 से 10 घंटा अगर ट्रैक्टर हमारा लगातार चलल बा तो ई सब समान सावधानियाँ बा जोन हमारा देखे के बा।
1: जी जी,
0: अगर यही में अगर बात कर जाए कि ट्रैक्टर हमारा ढेर देर चलल बा, 50-60 घंटा चल लेलस, ढेर दिन चलता, कंटिन्यू चलता, काम चलता, तो ओकरा में ई सब तो कैला के साथ साथ हम ओकरा फिल्टर के क्लीन कर ली, हम ओकर ब्रेक्स के सही से चेक कर ली, ओकरा में और भी जोन अंदर क्लच के जोन प्रेशर होला, क्लच के जोन पावर होए के चाहिए, वो क्लच सही से पकड़ता कि ना, छोड़ला पे पकड़ता कि ना, वो सब सही टेस्ट करा लेवे के चाहिए हमारा सर्विस सेंटर जा कर के।
1: जी जी जी, ओकरा अलाइनमेंट के चेक करा लेवे के चाहिए ताकि टायर ना खाए पाए।
0: हाँ, अलाइनमेंट चेक करा ली, टायर के फ्रंट और बैक के जोन प्रेशर बाटे वो चेक करा ली।
1: जी,
0: ये सब सावधानियां हमरा के बरते के चाहिए।
1: जी, ई तो ट्रैक्टर का बात रहल। एकरा अलावे भी विभिन्न जोन कृषि यंत्र बांसन उकरा में छोट मोट समस्या आवत रहला जोन की अपना से भी दूर कई जा सकेला, तो कौन कौन समस्या आवेली सन ओकर समाधान कैसे कही जाओ?
0: देखिए विभिन्न कृषि यंत्र में अगर कही जाए तो बहुत सारा यंत्र बा, ओकरा में से कुछ यंत्र के हम बताओ तनी कि जैसे हमनी के खेत में भूमि तैयार करे के मशीन बा
1: जी,
0: तो ओमे बा MB प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ आवेला, डिस्क प्लाऊ बा, चीजल प्लाऊ बा, रोटावेटर बा, सब सॉइलर बा। तो MB प्लाऊ में जो मोल्ड बोर्ड होला आ शेयर होला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। काहे कि मेन खेत के जुताई में यह काम करेला, जो शेयर बाटे वही मिट्टी के काटेला, और मोल्ड बोर्ड बा वही मिट्टी के काटला, काटल मिट्टी के पलटी करेला। ये एकर MB प्लाऊ के बहुत ज्यादा विशेष बनावेला, बाकी सब अलग प्लाऊ से। तो ये ध्यान रखे के बा कि जब भी हम ई प्लाऊ के इस्तेमाल करी तो हमार शेयर के जहाँ नट बोल्ट बा सही से टाइट कसल होके, शेयर के हमार शार्पनेस होके, तेज होके, अगर शेयर हमारे नीचे से भूथर हो गई बा, ब्लंट हो गई बा, तो ओकरा के चोक

0: डाली सही से, ताकि मिट्टी के कटाई के समय हमारे ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। मल्ड बोर्ड जन बा में माटी अगर जाम हो गई बा ज़्यादा दिन से, अगर साफ नहीं कैले तो साफ करा ली, ताकि ओकर मिट्टी पलटन जो कॉन्सेप्ट बाटे जेकरा खातिर बनावल गई बा उ सही से काम कर पावे। ओकर जो फ्रॉग बाटे जो सब पार्ट के जोड़ के रखेला ओकर नट बोल्ट सही से चेक कर ली। ये होल हमार मिट्टी के मतलब भूमि तैयार करे के। भूमि तैयार करे में दूसर जो मशीन बाटे चीजल प्लाऊ बा, रोटावेटर बा, डिस्क प्लाऊ बा, तो डिस्क प्लाऊ में देखी डिस्क लागल रहेला। अब डिस्क प्लाऊ में भी दो तरह के डिस्क प्लाऊ आ गई बा, स्टैंडर्ड डिस्क वर्टिकल डिस्क प्लाऊ, दोनों के अपन अपन काम बा। तो एमे स्क्राइपर एगो रहेला जोन डिस्क प्लाऊ से माटी को छुड़ावत रहेला। उ स्क्राइपर अगर ढीला हो जाए तो डिस्क प्लाऊ के जोन एक्शन होला माटी काटे वाला उ सही से ना हो पाई। तो स्क्राइपर के ध्यान रखी कि डिस्क प्लाऊ में से सही से अटैच होके, अगर ढीला हो गई बा तो ओकरा के कस ली, स्क्राइपर में अगर धार कम हो गई बा तो धार के सही कर ली। फिर डिस्क प्लाऊ में एगो और बात ध्यान रखे के बा कि ओमे दो तरह के कोण बनावल जाला, एगो डिस्क कोण कहाला एगो टिल्ट कोण कहाला। ओकर एगो विशेष काम रहेला भूमि कटाई के दौरान, तो उ जोन स्टैंडर्ड डिस्क प्लाऊ चाहे वर्टिकल डिस्क प्लाऊ जोनो डिस्क प्लाऊ अपन यूज करतनी ओकर मैनुअल के जरूर फॉलो करी, ओकर मैनुअल के जरूर देखी। डिस्क प्लाऊ में डिस्क एंगल मेनली रउआ के 42 से 45 डिग्री तक बनावल जाला, टिल्ट एंगल रउआ के 15 से 25 बनावल जाला। तो उतना बनता कि ना, काहे कि अगर उतना ना बनी तो मिट्टी कटाई के दौरान वो हमारे डिस्क प्लाऊ वाइब्रेट करी, झटका दही हिली, हमार एकदम एक लाइन में कटाई ना करी, मिट्टी के पलटन सही से ना करी। तो इस सब के ध्यान हमरा देवे के पड़ी।
1: जी जी, तो डॉक्टर विकास सिंह जी आप पहली आ खेती में जाए से पहले हमनी का कृषि यंत्रण का कैसे देखभाल कर जाओ, कैसे कई जाओ आ कौन कौन समस्या आवेले ओकर समाधान कैसे कई जाओ, एकरा बारे में नीमन जानकारी धनी, एकरा खातिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखे झूली बहन
3: जी,
2: इतना नीमन ढंग से यहाँ के बतौला है कि हमने के खेत में जौन भी पेथी बा यंत्र बा कृषि के सही भाल से देखभाल करके खेत में ले चला जाओ। अब कुछ संदेश जान लिया जाओ तब
3: हाँ सुने के।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतरवर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर

0: सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
1: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
1: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखे झुन्नी बहन
1: जी जी
0: अब चलल जाओ अपना खेती बाड़ी में, क्योंकि नया उम्र के नया फसल में जौन हमनी के बत कही में कल ही जा वह भी देखी बरसात के समय शुरू हो गई बा और एक तैयारी जौन बा अभी से हमनी के
1: करे के मुख्य रूप से जूने जुलाई के महीना में शुरू हो जाला।
0: इसे देखी तरकारी तो अभी खेत में हमनी के लागल बा, मने वो जेठुआ
1: जेठुआ
0: चल रहल बा, तीन तरकारी बाजार में नरम गरम भाव में भी ये मिल रहल बा, लेकिन बरसात के खेती के महत्व कुछ और बा। काहे से कि बरसात में जौन सब्जी होला वो ऊंच जमीन पर होला,
1: में ज्यादा तूल तल करे के ना पड़ेला।
0: अच्छा, पटवन कम होला,
1: पटवन कम होला, हाँ।
0: कीड़ा मकोड़ा कम लागे रसन, लेकिन खेत में घास ज्यादा जमेला, खर पतवार ओकरा के निकाई कोड़ाई बहुत से दर दवाई आ गिल बा। और एकर खेती जौन बा बरसाती जहाँ पानी के निकास जहाँ जौन खेत में पानी मने ना लागे वो खेत में रोपल जाला।
1: जैसे कि लतरदार सब्जी ज्यादा होला ना आजकल के,
0: लतरदार में देखी ऐसा सब्जी में जैसे भिंडी भी होला, नेनुआ होला, कद्दू होला, तरोई, खीरा, एकरा अलावे देखल जाओ फूल गोभी, बोदी, करैली, पलकी, बैगन, बहुत भी बरसाती सब्जी बा जौन उच्च जमीन पर होला।
1: कुछ तो मचान बांधे के पड़ेला।
0: हाँ देखी मचान के तो बाते मत करी, अब जैसे देखी देहात में पहले भदई लौका रोपा जाला, अब एगो मचान देखी गांव घर में लोग गाड़ देला, आ गाड़ के ऊपर जब लकुआ लौकुआ जब चढ़ जाई तो ऊपर बुझ नहीं कि नीचे मवेशी बांध बैसन ठंडा में, आ कुछ आदमी जाए वो गांव में तो बैठ जाए लगा भाई ठंडा बा। लेकिन देखी खेती जौन बा ऊंचासे के मजा है बरसात वाला, और देखी एकर समय जौन बा चल रहल बा, यानी कि महीना जून और जुलाई रोपाई के जरूरत बा, और इसमें भरपूर देखी फायदा होला। इससे ये भरपूर फायदा पर
1: हाँ देखी तो खेती बरसाती हो गई। जगत भैयाज के नसीहत बा कि धान के बिचड़न के देखभाल करे के, तो देखी धान के बिचड़ा के सही देखभाल से ही मुख्य खेत में रोपाई खातिर स्वस्थ और मजबूत पौधा तैयार होखेला। एकरा खातिर क्यारियन में पटवन हमेशा सुबह चाहे शाम में ही करे के चाहिए, काहे कि तेज धूप में पानी डाले से पौधा के गले के डर रहेला।
0: देखी धान के जब बिया के बात कर रही बीजरात के तैयारी के
1: जी जी
0: मौसम

0: सिंह चल रहा बा घाम गरम तो बात रवा सही कह रही कि सुबह चाहे शाम के अगर दिन में सुबह अक्सर शाम में अगर पटवन हो जाता तो एक फायदा बा कि जोन पटवन कर पानी जमीन के अंदर सट गई और अगर खूब भोर में पटवन करते हैं तभी पानी सट गई उतने पटाई कि जितना पानी जमीन में
1: नमी बनल
0: हाँ अगर पानी भर देतनी आ ये घाम गरम में जैसे पानी गरम हुई तो जौन पौधा के बिया बा बीज बा गले के डर बा और खराब हो जाए।
1: तो देखी दिन में हमेशा जैसे रखनी के हल्का नमी बना के रखे के चाहिए अब पौधा जब एक चाहे दो इंच के हो जाए तब 1.5 से 2 सेंटीमीटर पानी ओकरा में डाले के चाहिए। आ देखी बिचड़ा में अच्छा ओकर पैदावार होके खातिर प्रति बीघा लगभग 2 किलो यूरिया 700 ग्राम जिंक सल्फेट आ 500 ग्राम कीटनाशक के मिश्रण जौन बना के शाम के समय एकर छिड़काव करे के चाहिए। आ देखी जगत भैया तनि हमने के लगे हाथ मौसम पर भी देखी
0: जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: कुछ किसान भाई लोग के सलाह मशविरा भी बाटे तो देखी मौसम जौन बाटे मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान के अवधि में 18 से 21 जून के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी आई आ 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा भी चली आ एकरा माध्यम से वर्षा होके के भी अनुमान बा। अधिकतम तापमान एकरा में 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान जौन बा 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। आ देखिए एकरा में हवा जौन बाटे सापेक्षित आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहे के संभावना बा। आ पूर्वानुमान के अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिणहा पूर्वैया हवा चले के
0: संभावना
1: बा। ती तरह मौसम के पूर्वानुमान आ देखी जगत भाई आवे वाला दिन में वर्षा के संभावना के देखते हुए खड़ा फसलन में सिंचाई स्थगित कर देवे के चाहिए आ खाद कीटनाशक के छिड़काव जनबा आसमान साफ रहला पर ही करी
0: मने बदरा बदरी चाहे आसमान देख रही साफ बात तबे करी।
1: मक्का के जे खेती कैले बा खरीफ मक्का के बुआई करी खेत के जुताई में 10 से 15 टन गोबर के सरल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करी आ बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन 60 किलो स्फूर आ 50 किलो पोटास के व्यवहार करी। अनुशंसित मक्का की किस्म जैसे सुवान हो गई देवकी हो गई शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 आ गंगा 11 हो। तो देखिए ई रह गेल
0: प्रभेद में मकई के जितना भी खेती बा अगर प्रभेद देखी बढ़िया रही पैदा बढ़िया हुई ऐसे किसान भाई लोग के हमने के सलाह दी न जा कि बढ़िया प्रभेद से खेती करी
1: बीज लगाई तो बढ़िया
0: बढ़िया पैदा हुई और पैदा जब बढ़िया हुई तो भरपूर आमदनी हुई बाजार में जाए तो
1: पैदावार बढ़िया हुई। तो देखिए अब हमने के
0: समय और आ गए
1: समय और आ गए समय हो गए किसान भाई बहन लोगन से विदा लेवे के तो चले चले के बेरा में सब श्रोता भाई बहन लोगन के तरफ झुनी बहन के तरफ से प्रणाम आ जगत भाई रहुओ के नमस्कार
0: नमस्कार सब श्रोता भाई लोगन के भी जगत भाई के नमस्कार।

अभी हम सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं सांझगीत में भोजपुरी फिल्मी नगमे।

दुल्हा बाबू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण की आवाज़ थी, विनय बिहारी का लिखा गीत था, दुर्गा नटराज का संगीत था। अगला गीत आइए सुनते, आशा भोसले की आवाज़ में, लक्ष्मण साहबादी का लिखा गीत, चित्रगुप्त का संगीत, और फिल्म है गंगा किनारे मोरा गांव।

गंगा किनारे मोरा गांव। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में। लक्ष्मण शाहबादी का लिखा गीत था, चित्रगुप्त का संगीत था। रूठ गई ले सैया हमार। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। अनजान के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पांख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।

इंदु सोनाली और अविक चटर्जी की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे, प्रेम लीला फिल्म से। माइकल बिहारी का लिखा गीत था, मधुकर आनंद का संगीत था। अब आइए सुनते अगला गीत, आशा भोसले की आवाज़ में लक्ष्मण शाहबादी का लिखा गीत, चित्रगुप्त का संगीत, और फिल्म है गंगा दुल्हा पार के।

रखवाला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जावेद अली की आवाज़ थी, प्यारे लाल यादव का लिखा गीत था, धनंजय मिश्रा का संगीत था। और श्रोता, इसी के साथ सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर। शाम के 7:15 हो चुके हैं, तो अब आइए सुनते हैं सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

स्वागत है आप सभी का सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। नगर निगम बनाएगा 16 सामुदायिक शौचालय, दो विशिष्ट सुपर डिलक्स। नगर निगम शहर के 16 सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के साथ साथ दो सुपर डिलक्स शौचालय का निर्माण करेगा। इस परियोजना पर 2 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। इसके लिए लॉटरी के माध्यम से संवेदक का चयन बुधवार को किया गया। शहर के बेदा स्थित बस पड़ाव में 23 लाख रुपए और जीटी रोड पर रोजा गेट के पास स्थित ईवीएम भवन परिसर से सटे पिंक टॉयलेट के निर्माण पर 23 लाख रुपए खर्च होंगे। मेयर काजल कुमारी ने बताया कि सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर प्रति यूनिट 10 लाख रुपए व्यय होंगे। इन शौचालयों का निर्माण वार्ड संख्या 6 के रामपुर जोई की दलित बस्ती डीहरा दलित बस्ती, वार्ड संख्या 21 के खिलनगंज के रविदास बस्ती, वार्ड संख्या 38 के ताराचंडी के कोल बस्ती, वार्ड संख्या 41 के मिश्रीपुर, वार्ड संख्या 42 के दवनपुर और बढ़ैयाबाग, वार्ड 8 के शेरशाह होटल के सामने, वार्ड संख्या 16 के पेट्रोल पंप के पश्चिम, वार्ड संख्या 16 के पेट्रोल पंप के पास, वार्ड संख्या 17 के बौलिया मोड़ के पास, वार्ड संख्या 23 के सदर अस्पताल के पुराने गेट के पास। कलेक्ट्रेट गेट के सामने दक्षिण में और वार्ड संख्या 28 के प्रभाकर मोड़ के पास किया जाएगा। इसके लिए टेंडर का निष्पादन कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सासाराम में शौचालय की जरूरत है।

इसके साथ यूरिनल की कमी है, जगह जगह यूरिनल बनाया जाए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कनक सिंह ने बताया कि भीड़ वाले क्षेत्रों में यूरिनल का निर्माण होना चाहिए, शौचालय बनाने का निर्णय स्वागत योग्य है। सिकरिया के अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि सिकरिया नगर निगम क्षेत्र में है, इस तरफ तेजी से विकास हो रहा है, निगम को इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मुहर्रम पर कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। आगामी मुहर्रम पर्व को शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बुधवार को स्थानीय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने की। इस अवसर पर नोखा नगर परिषद के मुख्य पार्षद राधेश्याम सिंह, BDO सेफाली और CO मधुसूदन चौरसिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अधिकारियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और शांति संधारण की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। और श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक खूबसूरत प्यारा गीत।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, भाई आपको लेकर चलते हैं प्रादेशिक समाचार के लिए आकाशवाणी के पटना केंद्र।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी तैनात की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल एक दिवसीय बिहार दौरे पर, कई रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय बने राज्य के नए महाधिवक्ता। विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि छात्राओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए राज्य के विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। वे पटना के गांधी मैदान में बिहार रक्षा वाहिनी के 9 नामांकित गृह रक्षकों के पासिंग आउट परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करीब 5,000 स्कूटी और मोटरसाइकिल से पुलिस दीदी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी, जिससे छात्राओं को सुरक्षित और सकारात्मक माहौल मिल सकेगा।
1: विशेष तौर पर जो बालिकाएं के लिए स्कूल कॉलेज हो, उसके सामने विशेष सुरक्षा देना है। लगभग 5,000 स्कूटी और मोटरसाइकिल खरीदे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी कॉलेज और स्कूल के सामने हमारी जो बहने हैं, छोटी छोटी बहने, पुलिस दीदी उनका संरक्षण करने का काम करेगी।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी का सशक्त और आधुनिक स्वरूप राज्य की प्रगति, विकास और बेहतर कानून व्यवस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के निर्माण में पुलिस बल तथा गृह रक्षा वाहिनी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है तथा कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा।
1: बिहार में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। मैंने साफ तौर पर कहा, बिहार में बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना है, चाहे वो पुलिस वाले हो या होमगार्ड के जवान हो, इनका दायित्व तो बनता है कि बिहार को सुरक्षित रखना है। और सरकार ने पूरी खुली छूट दी है, अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना होगा।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता 774 रुपए से बढ़ाकर 1,000

0: ₹121 किया गया है। उन्होंने नौ प्रशिक्षित जवानों से अनुशासन, निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विभूति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज का स्थापना दिवस भी आज मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था और बुनियादी संरचना विकसित करनी है जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सशक्त हो सके। उन्होंने कहा, सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े बल्कि उन्हें अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।
1: हमने यूनिवर्सिटी बढ़ाया, कॉलेज बढ़ा रहे हैं, अब ये व्यवस्था खड़ा करनी है। यदि डीन यूनिवर्सिटी या किसी ओपन यूनिवर्सिटी की भी व्यवस्था एन कॉलेज में देनी पड़ेगी, मैं दूंगा, लेकिन पूरी संरचना खड़ा करना है। हमारे लोग को पढ़ाना है, किसी बाहर के लोगों को नहीं पढ़ाना।
0: केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कल एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री वैष्णव सुबह पटना पहुंचेंगे और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया पटना का दौरा करेंगे, जहां वो सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुंचेंगे और वहां से रेल मार्ग से छपरा जाएंगे। छपरा रेलवे स्टेशन पर वो छपरा आनंद विहार टर्मिनल नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर श्री वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ आनंद विहार टर्मिनल रेल सेवा तथा दोरीघाट औडिहार रेल सेवा के वाराणसी तक विस्तार का शुभारंभ भी करेंगे। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री मढ़ौरा स्थित रेल इंजन कारखाने का दौरा करेंगे और वहां 91 निर्यात लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और रेलवे की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आशीष रंजन के साथ समाचार कक्ष से मैं निधिश्री।
0: वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उनकी नियुक्ति की है। श्री संजय पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इससे पहले वे भारत सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने श्री संजय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। श्री सिंह मुंगेर के पोलो मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल केवल नारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के कार्यों की वास्तविक उपलब्धियों का प्रतिबिंब है। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के विकास कार्यों को और गति देंगे। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नो मैन्स लैंड, गायब सीमा पिलर के पुनर्गठन, सीमावर्ती क्षेत्रों से शीर्ष अतिक्रमणों को तत्काल हटाने तथा संदिग्ध वित्तीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि सीमा क्षेत्र में चिन्हित 1,359 अतिक्रमणों में से 1,349 को हटाया जा चुका है। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की, जिसमें बिहार समेत कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया की

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संकल्पों को पूरा करने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री आज पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के पिपलावा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार के सहयोग पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करने और लोगों की समस्याओं को पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की अपील की, ताकि उनका त्वरित समाधान हो सके।
1: भाजपा के कार्यकर्ताओं से इतना आग्रह करूंगा कि जो गरीबों को दिक्कत है उसको सहयोग पोर्टल पर जरूर ले जाने का, क्योंकि गरीब का यदि भला हो गया तो वो जीवन भर आपको याद रखेगा साथी। इसलिए साथियों, मैं फिर से यही आग्रह करूंगा कि मोदी जी ने इस भारत को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है और आप लोगों को भी इस काम को आगे बढ़ाना है।
0: श्री चौधरी ने सीतामढ़ी में निर्माणाधीन माँ सीता मंदिर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2029 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। प्रदेश में मॉनसून अब भी कमजोर बना हुआ है। हालांकि स्थानीय कारकों के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया में सबसे अधिक 69.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं विभाग ने पटना सहित 15 जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 19 जून राज्य के बेगूसराय, लखीसराय एवं मुंगेर जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर 42.5 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में कर्तव्यहीनता और लापरवाही बरतने के आरोप में शाहबाद प्रक्षेत्र के DIG डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भोजपुर SP राज की अनुशंसा पर शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार सहित 5 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में 20 जून से पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करने लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पश्चिम चंपारण के बेतिया, अररिया के फारबिसगंज, गोपालगंज, सीवान और गया जी में यह सेवा केंद्र खोले गए हैं। रोहतास जिले के धनगाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से प्राकृतिक खेती पर जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में किसानों को जीवामृत, बीजामृत और फसल विविधीकरण जैसी तकनीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 250 किसानों और जीविका समूह

महिलाओं ने भाग लिया तथा प्राकृतिक खेती अपनाने का संकल्प लिया। वहीं सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के डुमरी बुजुर्ग में प्राकृतिक खेती विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और इसके लाभों से अवगत कराया गया। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित नवादा, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के रहने वाले हैं। आरोपितों के पास से ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। मामला को लेकर जिले के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 102 ग्राम स्मैक और एक बिना नंबर की स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे बसमतिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन से 119 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक

की परीक्षा के दौरान दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित नवादा, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के रहने वाले हैं। आरोपितों के पास से ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। मामला को लेकर जिले के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 102 ग्राम स्मैक और एक बिना नंबर की स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे बसमतिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन से 119 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रोहतास के करगर थाना क्षेत्र के बाउर गांव में तालाब में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी तैनात की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल एक दिवसीय बिहार दौरे पर, कई रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय बने राज्य के नए महाधिवक्ता, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
1: किशनगंज जिले में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के साथ मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और धान की खेती की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि लगातार बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या भी देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी प्रखंडों में 16 से 18 जून तक आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही आमजन की शिकायतों और समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने टेढ़ागाछ और बहादुर प्रखंड के शिविरों का निरीक्षण किया। लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए तथा अधिकारियों को लंबित आवेदनों और शिकायतों के त्वरित निपटारे का निर्देश दिया। शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सहित कई योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही है। पिछले दिनों जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि

0: जनधन योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।
1: पीएम स्वनिधि योजना में 74 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के लोन मिला, तो मुद्रा योजना और विश्वकर्मा योजना जिसमें रोजगार मिला। इसलिए मित्रों, ये पीएम किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 4.3 लाख करोड़ जो है उनके खाते में अभी तक ट्रांसफर किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिला और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.5 करोड़ खाते खोले गए। इसलिए मित्रों, 2014 से 2026 तक 12 वर्ष तक प्रगति पथ पर अग्रसर भारत सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत के रूप में उभर कर निकला है।
0: इधर जिले में हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। बिहार सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 24.70 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परियोजनाओं के लिए 5,45,97,100 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जानकारी के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का उपयोग रनवे विस्तार और एयरपोर्ट की तकनीकी सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। नागरिक उड्डयन विभाग ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। भूमि एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि रनवे विस्तार से किशनगंज सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र की हवाई संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में बड़े विमानों की आवाजाही का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जल्द ही जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा। बीते दिनों जिले में लंबे समय से हड़ताल पे चल रहे 30 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने कार्यस्थल से अनुपस्थिति के कारण यह कार्रवाई की है। जारी आदेश के अनुसार पंचायत सचिवों की अनुपस्थिति से पंचायत स्तर पर कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिनमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, वंशावली बनाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सत्यापन और पंचायतों के दैनिक प्रशासनिक कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त सष्टम राज्य वित्त आयोग योजना, 15वीं केंद्र वित्त आयोग योजना और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी बाधित हो रहे थे। किशनगंज जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत स्कूलों, सरकारी कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण किया गया। जिला प्रशासन, वन विभाग, नमामि गंगे समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा सशस्त्र सीमा बल की ओर से विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
3: एफएम के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम ई मन पसंद। फरमाइशी ईमेल पर आधारित ये कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और श्रोताओं आपने प्यारे प्यारे ईमेल मैसेज भेजे हैं हमें। तो चलिए पहला गीत हम सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में, सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत। और इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल मैसेज किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज, बिट्टू बजाज। आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। कुछ और मैसेज ले लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। और ऐसा ही ये ईमेल मैसेज आया है बंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने लिखा है कोई भी गीत सुना दीजिए। तो चलिए आपको भी हम सुनवा रहे हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का ये खूबसूरत गीत मुकेश की आवाज़ में।

सरस्वती चंद्र फिल्म का ये खूबसूरत नगमा हम सुन रहे थे आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता जो कि हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। तो चलिए आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं, कुछ और मैसेज शामिल कर लेते हैं। और ये हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए, तो इनको भी हम सुनवा रहे हैं लव स्टोरी फिल्म का ही ये खूबसूरत गीत। आइए सुनें।

लव स्टोरी फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे आप सबों की पसंद पर। और अब आइए सुनते हैं अखियों के झरोखे से फिल्म का गीत हेमलता की आवाज़ों में आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। आप सभी एचडीओ मार्केट नोखा से मोती माला, चंदन कुमार, कमलेश कुमार, कृष्णा, सुदामा और मनोज कुमार गुप्ता, आप सबों ने सुनना चाहा है अखियों के झरोखों से फिल्म का गीत हेमलता की आवाज़ में। तो चलिए आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। कुछ और मैसेज शामिल कर लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। करणवीर हाउस भूचो कैचिया बटिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिम्मू, एकम दमन और अभिजोत। तो आप सभी को हम सुनवा रहे हैं अखियों के झरोखों से फिल्म का गीत। एक और मैसेज ले लेते हैं, इन्होंने भी कोई भी गीत सुनना चाहा है। ये हमारे श्रोता है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से हैं अवधेश राय। तो चलिए आप सभी को सुनवा रहे हैं अखियों के झरोखों से फिल्म का खूबसूरत गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ब्रेक के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है आप सभी का ई मनपसंद कार्यक्रम में। और श्रोताओं अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं बरखा फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अब जान लेते हैं इस गीत को किन श्रोताओं ने सुनना चाहा है। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुनिशा सबिता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यस मंसूरी ने सुनना चाहा है बरखा फिल्म के गीत को। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। कुछ और मैसेज ले लेते हैं। ये हमारे श्रोता हैं दतरंगी के भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा रुद्र वर्मा। इन्होंने लिखा है कि कोई भी गीत सुना दे। तो चलिए आपको भी हम सुनवा रहे हैं बरखा फिल्म का ही नगमा। और ये हमारे श्रोता है कुआत बिहार से शेख जफर हसन नरगिस जफर। इन्होंने लिखा है कि लता मंगेशकर की आवाज़ में कोई भी गीत सुनाइए। तो चलिए आप भी सुनिए बरखा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए सुनिए।

बरखा फिल्म का ये खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अब श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत फूल और कांटे फिल्म से। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल मैसेज किया है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह ने। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत फूल और कांटे फिल्म का हम सुनवाएंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। लेकिन कुछ और मैसेज ले लेते हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। ये हमारे श्रोता हैं शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौंड, कविता गौंड, राधा नामदेव, रानी झाप, संजय ढिंगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई। इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है, तो चलिए आप सभी सुनिए फूल और कांटे फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, भाई सुनते हैं अगला गीत अंधा कानून फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। तो चलिए आप सभी को आपकी पसंद का गीत अंधा कानून फिल्म से सुनवा रहे हैं। कुछ और मैसेज है, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश ऋषिता, आप सभी ने कोई भी गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी को हम सुनवा रहे हैं अंधा कानून फिल्म का ही गीत। और एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है, आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौण और मोहम्मद शादाब खत्री। तो चलिए आप सभी सुनिए अंधा कानून फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

अंधा कानून फिल्म का ये खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अब आइए सुनते अगला गीत फिल्म बेटा से। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत बेटा फिल्म से सुनवा रहे हैं। कुछ और मैसेज ले लेते हैं। ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बैन्य बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और साथ में सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। तो चलिए आप सभी को हम सुनवा रहे हैं बेटा फिल्म का ही ये खूबसूरत गीत। लीजिए सुनिए।

बेटा फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में। श्रोताओं भाई सुनते हैं अगला गीत उत्सव फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आप दोनों को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। और एक और मैसेज है, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण जयश्री इनको भी हम सुनवा रहे हैं उत्सव फिल्म का ही गीत। तो आइए सुनें।

श्रोताओं अब आइए सुनते हैं अगला गीत जाने होगा क्या फिल्म का, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। और ये गीत हम सुना रहे हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर के श्रोताओं को। आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है तो चलिए आप सुनिए। और ये हमारे श्रोता है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेघलानी, बबीता।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद अब यहीं समाप्त होता है। और श्रोताओं, अब आइए चलते हैं समाचार संध्या के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र आपको लेकर।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways.

0: for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की. इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई. बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया. एक रिपोर्ट.
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है. मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है. सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है. महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस.
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी

0: जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन

में अनमोल खारा और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बज चुके हैं और श्रोताओं आइए सुनते हैं लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकधारा में ये लोकगीत, भोजपुरी लोकगीत, और इसी के साथ लोकधारा कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं महफिल में खूबसूरत गज़ल।

गजल के फूल, ये गीत गजल आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में। नसीम अजमेरी का लिखा ये गजल था और भूपेंद्र सिंह का संगीत था। अब आइए सुनते हैं कलाम में मोहब्बत गुलाम अली से। संत दर्शन सिंह की ये गजल है, अलाउद्दीन खान का संगीत है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस।

0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: गुलाम अली के गाइस खूबसूरत गजल के साथ ही श्रोताओं आज की महफिल यहीं संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब आइए चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान।

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांस

सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दान सिंह की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा, जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी

तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही है।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की बानगी

अफसोस 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति रमेश गोखले।

FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब आइए आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम हिंदी एल्बम सॉन्ग का रस रंग।

सचेत टंडन और परम्परा ठाकुर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गीत चांदनी मोरा रसन। अब आइए सुनते हैं करामेरी की आवाज़ में अगला गीत।

तुझे चुन लिया, ये गीत आप सुन रहे थे पलक मुच्छल और उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ों में। सतीश त्रिपाठी का लिखा गीत था, सतीश त्रिपाठी का ही संगीत था। अब आइए सुनते हैं ना जाने ये क्या हुआ एल्बम।

मोको कहाँ ढूंढे, जतिन एंड विंग्स की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। कबीर दास का लिखा, जतिन एंड विंग्स का संगीत निर्देशन था। अब आइए सुनते हैं इश्क हुआ, एश शुभम और सलोनी कक्कर की आवाज़ों में, सबीर अहमद और अनजान का ये सारंगी का लिखा गीत है, सबीर अहमद का संगीत है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इस शुभम और सलोनी कक्कर की आवाजों में अभी आप संदेश से पहले सुन रहे थे इश्क हुआ। और श्रोता, इसी के साथ हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रस रंग अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। श्रोताओं भाई सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

बॉबी फिल्म का ये गीत सुन रहे थे मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। बुट पॉलिश फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं।

बुट पॉलिश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन का संगीत था। अब आइए सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म का गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

दिल की राह है फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में नक्श लयाल पुरी का लिखा गीत था, मदन मोहन का संगीत था। श्रोताओं अब आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं काला बाजार फिल्म का गीत।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ों में, शैलेंद्र का ये लिखा गीत था, एचडी बर्मन का संगीत था। और श्रोताओं, इसी के साथ हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चितपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे देते हैं। कल सुबह 5:53 पर वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुबह 6:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। और सुबह 8:00 दिल्ली से समाचार प्रभात का प्रसारण होगा। सुबह 8:15 पर आप सुनिएगा देशभक्ति संगीत। और सुबह 8:20 पर हम लेकर आएंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी।

सुबह 8:45 पर पटना से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे गीत मालिका के अंतर्गत हिंदी फिल्मी नगमे और सुबह 9:30 पर आप सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। सुबह 10:05 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, जिसमें संकलन और वाचन स्वर होगा रजनीश कुमार श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। सुबह 10:30 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत आप सुनेंगे और सुबह 10:45 पर असधार में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग प्रसारित होगा। दिन में 11:00 हम चलेंगे रंग तरंग कार्यक्रम के लिए विविध भारती के स्टूडियो। शाम 5:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 पर हमारी सखियां सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बहनों से बातें होंगी स्वस्थ जीवन का आधार योग और गीत संगीत इस कार्यक्रम में होंगे। चलते चलते सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, इस पर भी बातें होंगी। कार्यक्रम में सूत्रधार होंगी चंदा और शाम 6:00 भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे। शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन प्रसारित होगा। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम गाँव घर। इसमें चर्चा सुनेगा सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य, सतत पाक कला दिवस 18 जून पर विशेष। लोकगीत भी आप सुनेंगे और वार्ता सुनेगा चारित्रिक मूल्यों का विकास वार्ताकार रामाशेष सिंह से। एक जानकारी में संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जानकारी आपको दी जाएगी। कार्यक्रम में सूत्रधार होंगे प्रवीण कुमार दुबे। शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा और शाम 7:15 पर हम लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा और शाम 7:50 पर आप सुनिएगा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा जो हमारे केंद्र से रिले होगा। रात्रि 9:00 लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे। रात्रि 9:15 पर बंदगी में नात प्रसारित होगा कल। रात्रि 9:30 पर पटना से रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण होगा। रात्रि 10:00 हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम आप सुनिएगा रसरंग। रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा और रात्रि 10:55 पर अगले दिन के कार्यक्रमों की आपको जानकारी मिलेगी। रात्रि 11:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हैं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं और अब हिंदी में समाचार के लिए आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

आदाब सलाम नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे आपके ईमेल्स और सुनवाएंगे आपको बेहद प्यारे प्यारे गीत। और आज का ये सफर आप तय करेंगे आपकी साथी आपकी मितवा आपकी दीप्ति के संग। तो शुरू करें आज का ये सफर।